सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:55 और 45 सेकंड्स हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का, जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे अब से कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा

0: सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी गोरखपुर है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हे ईश्वर, आपके मंगलमय विधान देख सदैव प्रसन्न रहे हम सब, ऐसी चाहत रख।

हे ईश्वर, मैं कभी ना पाप करूं, ना होता देखूं, ना सुनूं और ना ही कभी किसी के पाप का बखान करूं। ऐसी कृपा, ऐसे उपकार मेरे पर

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है। हम अनाथ तुम नाथ हमारे तुमसे ही अब जीवन है। धन वैभव बल बुद्धि हो तुम तुमसे ही जन जीवन है। देवादि देव हे महादेव उपकार तुम्ही से सबका है।

0: इष्ट की वैशिष्टता, इष्ट का तात्पर्य।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न हुआ। आज का भक्तिमय सफर आपने तय किया श्वेता के साथ और कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया गया आकाशवाणी गोरखपुर से। प्रस्तुत है चिंतन बिंदु।
0: इष्ट की वैशिष्टता, इष्ट का तात्पर्य होता है कि हमारे जीवन में हम किसी न किसी की आराधना करते हैं। कोई भगवान शंकर की आराधना, तो कोई भगवान कृष्ण कन्हैयालाल की आराधना, कोई भगवान राघवेंद्र सरकार का, कोई भगवती परम्बा जगदम्बा का, और कोई काली जी का, अलग अलग सबकी इष्ट है। जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, अंतो गत्वा वह एक ही है। हमने अलग अलग रूपों में उनको स्वीकार किया है। लेकिन इष्ट के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, हम कैसे अपने इष्ट के प्रति ऐसे भावापन्न रहें जब भी इष्ट की बात आए, उस इष्ट के अलावा हम अपने जीवन में किसी फल की प्राप्ति बिना उस इष्ट के हुई है ऐसा माने ही ना। छोटा सा निवेदन हनुमान जी के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। जब पहली मुलाकात हनुमान जी महाराज की हुई राघवेंद्र सरकार से, तो विप्र का रूप धारण करके हनुमान जी गए। राघवेंद्र सरकार जी ने हनुमान जी को पहचान लिया, हनुमान जी ने राघव को पहचान लिया, चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज ने राघवेंद्र सरकार के चरणों को देखकर कहा, प्रभु इतने कोमल चरण हैं और इन कटीले कंकड़ों में आप चल रहे हो। तो लखनलाल जी मुस्कुराए और लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु आपके चरणों का दर्शन सब लोग कर रहे हैं और चरणों के कष्ट का व्याख्या भी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस कष्ट को दूर करने का प्रयास नहीं किया। एक भाई भरत थे, उन्होंने खड़ाऊ दिया, फिर भी खड़ाऊ लेकर चले गए। हनुमान जी महाराज लखनलाल जी के भाव को समझ गए, तो उन्होंने कहा कि जीवन में अब कभी राघवेंद्र सरकार विरत होके नहीं घूमेंगे, या हनुमान जैसा रथी उनका हमेशा सदैव रथ बन करके रहेगा। हनुमान जी महाराज अपने कंधों पर दोनों लोगों को स्कंधारूण करके और सुग्रीव के पास से ले जाने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे सर को पकड़ लीजिए, ध्यान दीजिए। हनुमान जी कहते, मेरे सर को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये खुली जहाज है, कहीं आप गिर गए तो। राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से पूछा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे गिरने नहीं देते, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर की विनती किया और कहा, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप गिरते नहीं, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ। आप गिरते तो मेरा अपमान हो जाता, तो मेरे अपमान के कारण आप गिरते नहीं। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, फिर तुमने सर पकड़ने के लिए क्यों कहा? उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको अपने कंधे पर बिठा करके सुग्रीव के पास लेकर गया, दर्शन प्राप्त होता। लोग यह कहते कि हनुमान तो महाबली है जिसने राघवेंद्र सरकार को अपने कंधे पर बिठा लिया और सुग्रीव के पास पहुंचा दिया। तो प्रभु यह हनुमान का बल कौन है, यह लोग जान नहीं पाएंगे कि हनुमान का बल कौन है, किस बल से उन्होंने राघवेंद्र सरकार को, लखनलाल को अपने कंधे पर बिठा करके पहुंचा दिया। जब आप हाथ रखोगे तो सबको

0: यह पता लग जाएगा, चाहे सबको यह प्रतीत होगा, सबको यह भान हो जाएगा कि जिसके ऊपर राम का हाथ हो वह हनुमान बलवान हो जाता है। मेरे बल आप हो, समाज को यह दर्शन प्राप्त होगा कि हनुमान के बल राम ही हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालु, नान्यैव जाने नैव जाने न जाने। राम के अलावा न कोई मेरा बल है, राम के अलावा न कोई इष्ट है। इष्ट के प्रति इतना विश्वास है कि जो भी कुछ है मेरे इष्ट के कारण है। अगर आपने विश्वास धारण कर लिया कि जो भी हो रहा है उसमें मेरा इष्ट सहायक है, तो निश्चित है आपका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता।
1: तो ये था आज का चिंतन। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त में बता दूं।

श्रोताओं, सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम का तीनों सभा में समय नोट कीजिए। रात्रि 8:15 पर, दिन में 12:50 पर और सुबह 9:50 पर। हिंदी कार्यक्रम में सत्यनारायण पथिक से काव्य पाठ सुनिएगा, समय होगा रात 8:00। और देश हमार प्रोग्राम में काव्य पाठ सुनिएगा धर्म सिंह आतुर से, इस प्रोग्राम का समय होगा रात 7:00।

आज का संगीतकार। इस कार्यक्रम में आज आप मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीतबद्ध किए नगमों का आनंद ले सकेंगे रात्रि 7:31 पर।

खेती बाड़ी कार्यक्रम लेकर आएंगे धर्मेंद्र कुमार दुबे, मनोज कुमार दुबे। इस कार्यक्रम में वर्षा जल का संचय कैसे करें, इस विषय पर चर्चा सुनिएगा। जयप्रकाश सिंह से वार्ता सुनिएगा। इसी कार्यक्रम में विषय होगा उर्वरकों में मिलावट की जांच कैसे करें। साथ ही कार्यक्रम में कुछ लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। समय नोट कीजिए, शाम 6:10। और श्रोताओं, बालवाड़ी प्रोग्राम का समय होगा शाम 5:35 पर। युववाणी प्रोग्राम में प्रेरणादायक शॉर्ट स्टोरी सुनिएगा। सुविचार से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और विश्व जनसंख्या दिवस पर वार्ता सुनिएगा। प्रोग्राम के आखिरी में प्रश्नोत्तरी से अपने को आंकिएगा। समय नोट कीजिए, शाम 5:05 पर।

नारी जगत प्रोग्राम प्रसारित होगा दिन में 1:15 पर। इस प्रोग्राम में सखियां, परिवार नियोजन में पुरुषों की भूमिका और महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य के साथ ही एक बहुत ही अच्छे विषय पर वार्ता सुनेंगी कि परिवार में संवाद का महत्व। समय एक बार फिर नोट कीजिए, दिन में 1:15 पर।

ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं मानस गान।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी गोरखपुर है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
5: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
4: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
5: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
8: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
9: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
10: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
9: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
10: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
9: गाने के बोल,
10: गीतकार
9: और संगीतकार,
10: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
9: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
10: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
9: गाते गुनगुनाते
10: सुनिए सुबह 10:05 पर।
9: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य इंगलवुड नगरस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे द्वितीयायां प्रागुपान्त्य चक्रे बेल्जियम देशं द्वे एकम अंकहि पराजित्य उपान्त्य चक्रे स्वस्थानं सुनिश्चितम् अकरोत् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल

फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, जब दिल में देश के प्रति प्रेम का जुनून हो और हवा में तिरंगे की शान, तब हर सुर बन जाता है वतन की आवाज। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देशगान, यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब से कुछ ही देर में हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है।

0: महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशु हानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है।
4: अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
3: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कल बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भदेश्वर नाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा।
4: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वर नाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है, और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और गोरखपुर जिले को कुल मिलाकर 1283 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 और गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। पटेकू अटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में तीन विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा तथा कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर का दौरा करने के पश्चात मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटट बांस स्थान में फोर लेन सड़क सहित पांच सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 19 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटट बांस स्थान फोर लेन मार्ग है। 11.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित है। समाचार कक्ष से रितेश।
3: पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कल पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे के समीप पौधा लगाकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट दिए और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करके देश का गौरव बढ़ाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की CBI जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की राशि की गिनती के काम में लगे 20 से अधिक कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच शेष बचे कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था और छुट्टियों में बदलाव किया गया है। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रदेश भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
0: इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
3: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश से हो रही जनहानि और पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मानसूनी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट।
6: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार फातिमा।
3: भारी बारिश के चलते बदायूं और सीतापुर में आज कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर, बारिश से हो रही जन और

0: पशुहानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के संग। पूर्वा सुहानी फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब से कुछ ही देर में

0: कली। जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: पूर्वा सुहानी में कार्यक्रम का पहला नगमा उड़ते उड़ते आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, साथिया फिल्म से।

अदनान सामी की आवाज़ में अभी आपने कार्यक्रम का पहला गाना साथिया फिल्म से सुना। इस गीत को कंपोज किया था AR रहमान ने और लिरिसिस्ट थे गुलजार। कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है दिल से, इस फिल्म से।

0: AR रहमान, अनुराधा श्रीराम, अनुपमा, फेबी मरी, इन सभी की आवाज़ में आपने ये खूबसूरत नगमा सुना जिसे लिखा था गुलजार ने। म्यूज़िक कंपोज़र थे AR रहमान और फिल्म थी दिल से।
1: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने फिल्म ओम शांति ओम से ये खूबसूरत नगमा सुना। इस गाने को लिखा था जावेद अख्तर ने, म्यूजिक कंपोजिशन था विशाल शेखर का। श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है आतिफ।

आतिफ असलम अलीशा चिनॉय की आवाज में अभी आपने अजब प्रेम की गजब कहानी इस फिल्म से ये गाना सुना। इस गीत को म्यूजिक कंपोज किया था प्रीतम ने और लिरिसिस्ट थे आशीष पंडित।

0: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
1: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
0: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
1: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ मेरे यार।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

राउडी राठौर इस फिल्म से ये गाना था। इसे आवाज़ दी है जावेद अली और श्रेया घोषाल ने। म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद, गीतकार समीर अंजान।

0: है समाचारों का।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
5: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
5: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
3: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
6: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation.

0: with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
2: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है। और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे

0: आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों के अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफद की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया, जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वजीर आजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दो तरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया था, जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाज़ा होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इक्तसादी शराकत दारी में एक बड़ा संग मील करार दिया। भारत को मौक़ों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। वजीर आजम मोदी ने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान मजीद सरगर्मियों के लिए भी कहा। उन्होंने तजवीज़ रखी कि 35 साल से कम उम्र के कारोबारी जज्बे वाले अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफूद को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए।

0: ताकि तवील मद्दती शराकत दारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इक्तसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: जनाब मोदी, दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरक़ी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाज़ों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज़ को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमन इस्तेहकाम के बुनियादी ज़मीन के तौर पर भारत के मौक़िफ़ को दोहराया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों को डिज़ाइन करने वाले ब्यूरो के डिज़ाइन करदा और मुंबई में मेज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज़ महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस है। ये जहाज़ दुश्मन के हथियारों को फ़ता और ज़मीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज़ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहर हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज़ का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाज़ों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहर हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शराकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीह मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तिजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तिजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निज़ाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तई अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल के साथ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के क्याम से मुतालिक पेशरफ का जायजा लेते हुए ये बात कही। वजीर दाखला ने कहा कि बंदरगाहों की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को ही दी जानी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए CISF के जरिए तरबियत याफ्ता एहलकारों को ही तैनात किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने BOPS के तहत तैनात किए जाने वाले सभी हिफाजती एहलकारों का जामे डेटा बेस तैयार करने की भी अफसरान को हिदायत दी। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि BOPS हिफाजती फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी बंदरगाहों को कंटेनर स्कैनिंग सहूलतों से लैस होना चाहिए। वजीर दाखला ने विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह समेत बड़ी बंदरगाहों पर मुजवजा सिक्योरिटी इंतजाम की आजमाइश करने की CISF को हिदायत दी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों की सहूलतों की हिफाजत का मायना करने और उन्हें मुंजबित करने का जिम्मेदार है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: इस मीटिंग में मरकजी दाखला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, सरहदी इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के सेक्रेटरी और माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी, नीज CISF के डायरेक्टर जनरल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मर्चेंट जहाजरानी कानून 2025 की दफा 13 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम को कानूनी इदारे की शक्ल दी जा रही है। ये ब्यूरो बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत डायरेक्टर जनरल के मातहत काम करेगा। ये ब्यूरो सलामती से मुतालिक मालूमात मुश्तरक करने, तजिया करने और उन्हें बरवक्त जमा करने की यकीनी बनाएगा। इसके अलावा ब्यूरो साइबर सलामती पर खसूसी तवज्जो देगा और एक मखसूस डिवीज़न साइबर हमलों के खिलाफ बंदरगाहों के IT बुनियादी ढांचे को

0: दरख्वास्त की है और अमरीका इस पर राजी हो गया है। वहीं अमरीका ने भी मुतालबा किया है कि ईरान आबनाए हुरमुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद करे। आबनाए हुरमुज़ में जारी लड़ाई की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब 3 कतरी और सऊदी तिजारती टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद अमरीका को ईरानी मकामात पर हमले करने पड़े और जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद 4,000 से तजावज़ कर गई है। वेनेजुएला की पार्लियामेंट के चीफ जॉर्ज रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि लातिनी अमरीकी मुल्क में 7.2 और 7.5 शिद्दत के जके बाद दीगरे आए 2 जलजलों में कम अज़ कम 4,118 अफराद हलाक हो गए हैं और 16,740 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हम अपनी सीरीज़ प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत अपने आइंदा नशरिए में जनाब आशीष अग्रवाल से बातचीत करेंगे, जो माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप 100.1 मीटर पर आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 पर सुन सकते हैं। आप ये प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी सुन सकते हैं। फीफा आलमी कप में कल रात अमेरिका के इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले फ्रांस ने बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मराकिश पर 2-0 की आसान जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। विंबलडन टेनिस के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में आज लंदन में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खवातीन खिलाड़ी अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं। पहली मर्तबा विंबलडन का फाइनल खेल रही मुचोवा पूरी तरह अपने खेल और तजुर्बे पर इन्हिसार कर रही हैं, जबकि अपनी सख्त हिटिंग के लिए मशहूर नोस्कोवा भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगी। विंबलडन में कल मर्दों के सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा, जहां आलमी नंबर 1 यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के शहर लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 3 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने की खबर को अहमियत दी है, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जबकि रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन बढ़ाने के लिए एक रोड मैप जारी किए जाने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु के कदीम विरसे की वापसी पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत के मालामाल सकाफती विरसे को उसके मकाम पर वापस लाने की समत में ये एक अहम कदम है। इस खबर को रोजाना प्रताप ने उजागर किया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ़ की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया जिससे दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज शाम विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहर हिंद खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। हिट सुपर हिट फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब से कुछ ही देर में
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DDH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. Agar baat

0: दर्शन की डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और प्यार भरा सलाम। मैं श्वेता हाजिर हूँ लेकर आपका अपना प्रोग्राम हिट सुपर हिट।
2: रेशमा
1: श्रोताओं, जिंदगी की राह में कभी धूप हमारा हाथ थाम लेती है तो कभी साए कुछ देर साथ चल पड़ते हैं, मगर उम्मीद की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हर अंधेरे में रोशनी का रास्ता तलाश लेती है। हमें करना बस इतना है कि मुस्कुराहट और सकारात्मक सोच को अपने दिल में जगह देनी है और म्यूज़िक का साथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आइए प्रोग्राम का पहला गाना सुनते हैं, जिसे हमने लिया है 1975 में आई फिल्म धर्मात्मा से।

धर्मात्मा फिल्म से अभी आपने कार्यक्रम का पहला नगमा सुना। श्रोताओं, उम्मीद एक ऐसी खामोश रोशनी है जो बिना शोर के दिलों को उजाला दे जाती है। जब हर रास्ता धुंधला सा लगे, तब यही उम्मीद हमें यकीन दिलाती है कि मंजिल कहीं नहीं गई, बस थोड़ा और चलना बाकी है। प्रोग्राम का अगला गाना हमने लिया है कुर्बानी फिल्म से।

कुर्बानी फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत नगमा सुना। श्रोताओं, जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक जैसा नहीं होता। कुछ पन्ने खुशियों से महकते हैं तो कुछ सब्र का इम्तहान लेते हैं। लेकिन जो हर लम्हे में अच्छाई तलाश ले, वही हर मौसम में बहार महसूस करता है। अगला गीत है 1993 में आई फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से।

जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

फिल्मी गीत हमारे एहसासों के हम सफ़र होते हैं। कभी आंखों में चमक बनकर उतरते हैं तो कभी दिल के बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से सजा देते हैं। एक प्यारी सी धुन कई बार उन बातों को कह जाती है जिन्हें लफ्ज भी बयां नहीं कर पाते। ये गाना जो आपने अभी सुना हमने लिया था एक दूजे के लिए फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गाना पेशे खिदमत है मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म से।

0: बंधुओं, याद रखिए, बदलते मौसम की तरह वक्त भी हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए उम्मीद का दामन थामे रखिए। अक्सर सुनहरी सुबह सबसे गहरी रात के बाद ही आती है, तो श्रोताओं, दुआ है कि आपके जीवन में उम्मीद की शमा हमेशा रोशन रहे, मुस्कुराहट आपके चेहरे की पहचान बने और सकारात्मक सोच आपके हर सफर की हमसफर रहे। इन्हीं खूबसूरत एहसासों और मधुर फिल्मी नगमों के साथ आज का हिट सुपर हिट ये महफिल को मैं यहीं विराम देती हूँ। 10:05 पर आपसे पुनः मिलेंगे हम। तब तक के लिए आकाशवाणी गोरखपुर ट्यून रखिए। जिले की हलचल के लिए आइए चलते हैं लखनऊ स्टूडियो।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
3: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर स्थलीय निरीक्षण और गबन की धनराशि से अर्जित की

0: गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 69,85,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस आगे भी आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई अहम बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की दान की गई सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिसे दानकर्ता ट्रस्ट से संपर्क करके देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें रसीद नहीं मिली है तो अब रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। SIT जांच रिपोर्ट के बाद आगे के अन्य निर्णय लिए जाएंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अयोध्या में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए DTB योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर योजना की शुरुआत की। इसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए गए। वहीं DTB योजना के तहत जिले के 1,14,669 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए की धनराशि भेजी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा कर मखाने की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद स्थापित किया। कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक किसानों को बेहतर दिशा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
1: पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमने अलग अलग विकल्प यहाँ के देखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देखा और यहाँ किसान भाइयों और बहनों के साथ खेत बचाओ अभियान पर यहाँ चर्चा की। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
0: अयोध्या को एक और सौगात के रूप में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। नगर निगम के PPE मॉडल पर तैयार इस म्यूजियम में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और लंका विजय तक के रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मोम की प्रतिमाओं के जरिए प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के संस्थापक सुनील कंडलूर ने बताया कि दूसरे चरण में रामायण से जुड़े और प्रसंगों को भी भव्य रूप दिया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगरी पहुंचे देवेंद्र सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: चेकिंग अभियान हमारा जारी रहेगा। तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 36 कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको सबको हम थोरोली चेक करेंगे। NOC जब भी इशू किया जाता है, जब उनके जो मानक है, हमारा निर्धारित मानक, वो पूरा करते हैं जब भी जारी करता है। बाद में जो पर्पज होता है चेकिंग अभियान का, वो ये रहता है कि जो अरेंजमेंट्स लगे हैं समय के साथ, कई बार वो जाने अनजाने या किसी कारण निष्क्रिय या अकार्यशील हो जाते हैं।
3: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 में स्थित अंबर एवं एसेंट के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। लगभग 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सेक्टर 8 में 8,200 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। 200 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक संयंत्र 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता से युक्त होगा। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 5000 प्रत्यक्ष एवं 15000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है।
4: इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों को पीसीबी के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
6: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में एक नई स्वीकृति दी है बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन ये मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदल देने का।
4: केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज यूपी को उत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक निवेश और विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानें शुरू होने के बाद कार्गो उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। 17 जून को एयर इंडिया सेट्स ने भारत के पहले एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब से माल ढुलाई के काम को शुरू कर दिया। इसे भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की पहली वाणिज्यिक शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयरापू राममोहन नायडू ने इस मौके को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी व लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और देश भर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। घटन ऊर्जा में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरन सिंह व श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जिसमें वर्तमान समय का जो युवा शक्ति है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के दूतावास और कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ईडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने ईडा क्षेत्र की निवेश क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईडा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों में निवेश हो रहा है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर मिशन शक्ति सेट से सहभागिता स्थापित की है। इस ऐतिहासिक मिशन में विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख शैक्षणिक एवं संस्थागत भागीदारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह महत्वाकांक्षी मिशन एरोस्पेस संस्था स्पेस किड्स इंडिया तथा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक एवं प्रोत्साहन संस्थान इन स्पेस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि सक्सेस मिशन से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जुड़ना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
3: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
7: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। देश गान ये प्रोग्राम बस अब से कुछ ही देर में।
8: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
9: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
10: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
9: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
10: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
9: गाने के बोल,
10: गीतकार
9: और संगीतकार
10: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम
9: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
10: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
9: गुनगुनाते
10: सुनिए सुबह 10:05 पर,
9: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
11: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
12: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई।

0: ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: श्रोताओं, देशभक्ति गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि हमारे जवानों की हिम्मत और भारत माँ के प्रति प्रेम की कहानी है। हर लफ्ज में मिट्टी की खुशबू है और हर धड़कन में देश के लिए जज्बा। आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है हमारा भी। इसी पैगाम के साथ आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबाब अंजुम रामपुर रेडियो मरकज़ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सलाम सुबह कबूल करें। सामीन, आज 11 जुलाई है और आज आलमी योम आबादी है। ये दिन 1987 से मनाया जा रहा है जब दुनिया की आबादी 5 अरब तक जा पहुंची, तो वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले सीनियर डेमोग्राफर डॉक्टर के सी जकरिया ने तजवीज़ पेश की कि आबादी का आलमी दिन मनाया जाए। और जब से ही ये दिन हम 11 जुलाई को मनाते आ रहे हैं। आबादी का आलमी दिन मनाने का मकसद आबादी के बढ़ने से पैदा होने वाले मसाइल और उसके हल को उजागर करना है। तो इसी दिन को पेश नज़र रखते हुए हमने आज अपने स्टूडियो में भी इनेकाद किया है एक मुबाहसे का, जिसका मौजू रखा है बढ़ती आबादी और हमारी जिम्मेदारी। इस खास मौजू पर तबादला ख्याल के लिए हमारी दावत पर जो हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब फजल शाह फजल साहब, हमारे शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर महमूद साहब, और एक तदरीसी इदारे में प्रिंसिपल के खिदमात अंजाम देने वाले हमारे सीनियर डॉक्टर इश्तियाक आलम आज़मी साहब। हम समीम कल्ब से अपने मेहमानों का अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। और सबसे पहले हम फजल भाई, आप एक सहाफ़ी हैं, आपकी नज़र रहती है मुल्क के हालात पर, मुल्क की अवाम के हालात पर, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या वाकई मुल्क की बढ़ती हुई आबादी इस मुल्क के लिए ख़तरा है या इसकी मैन पावर बढ़ाकर इसकी बेहतरी की तरफ एक कदम है।
3: देखिए, मैन पावर तो पूरी दुनिया में बढ़ ही रही है, इसके साथ साथ आबादी में इजाफा मेरी नज़र में जो है उसकी वजह बेरोज़गारी भी है। और जितने वसाइल थे वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन गुर्बत बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से वसाइल कम हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर फिजाई आलूदगी इसलिए बढ़ रही है कि तमाम जंगलात काटे जा रहे हैं
2: जी।
3: और उसमें लोग आबाद हो रहे हैं, वहाँ आबादियाँ तो बढ़ रही हैं लेकिन खाने पीने की अशिया जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं
2: जी। फजल भाई, आपके कहने का मकसद ये है कि जो इंसानी ताकत बढ़ने के साथ साथ, इंसान की आबादी बढ़ने के साथ साथ उसके साथ मसाइल भी पैदा होते जा रहे हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: डॉक्टर आज़मी साहब, आप हमें बताएं कि आपकी नज़र में आबादी बढ़ने का असर मुल्क पर किस किस तरह से हो रहा है?
4: देखिए, आबादी का बढ़ना बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि आबादी का ताल्लुक क्या पॉजिटिव है। अगर आबादी ऐसी है जो मुल्क के तरक्की में कारगर साबित हो रही है, मुल्क के हालात को बदल सकती है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकती है, तब तो वो सही है। लेकिन ऐसी आबादी जो अनस्किल्ड है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है, सिर्फ वो एक भीड़ बना दे चली जा रही है, तो मुल्क पे एक बोझ है।
2: यानी मजबूत सोच रखने वाले लोग अगर बढ़ रहे हैं,
4: मजबूत सोच अगर है तो आबादी का बढ़ना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये सोच बहुत कम है इसलिए एक मसला बनता जा रहा है ये।
2: डॉक्टर महमूद साहब, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मजबूत सोच रखने वाले लोगों की तादाद बढ़ती है तो हमारे मुल्क और दुनिया की बेहतरी के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ये बताएं आप कि इसके लिए जो वसाइल हैं क्या वो भी उतनी तेज़ी से बढ़ सकते हैं जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है?
5: देखिए, आपको मालूम है कि हमारा मुल्क दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस मुल्कों में से एक है। चाइना को भी पीछे हमने छोड़ दिया
2: जी।
5: लेकिन ये बात भी आप ध्यान रखें कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ साल पहले और कई बार ये बात कही है कि हिंदुस्तान का एक एडवांटेज ये है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है
2: जी,
5: और वो मुल्क को आगे बढ़ने में मदद करने को तैयार है। अब मसला सिर्फ यही है कि क्या हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड मैन पावर है या नहीं। इसमें गवर्नमेंट को जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IITs हैं, IIMs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो जो पिछले दिनों में एक सिस्टम था कि जो ऐसे अच्छे बेहतर इंस्टीट्यूशंस खोले और अच्छे क्या समझते हैं नासा और सिलिकॉन वैली, ये सब यहाँ पे हिंदुस्तानी ज़्यादातर काम कर रहे हैं, वो टाइम को प्रॉपर ट्रेन जो है वो मैन पावर को हमें क्रिएट करना पड़ेगा
2: जी।
5: अच्छा, अगर आप ये देखें कि फीमेल फर्टिलिटी रेट होती है
2: जी,
5: जिससे पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज का अंदाज़ा हो जाता है, तो वो ब्रेक इवन टाइप यानी जितनी आप जो है वो फर्टाइल एज में माएँ हैं या कपल्स हैं वो उससे ज़्यादा जो है वो कर पैदावार है उनकी या नहीं है, तो ब्रेक इवन जो है 2.1 पे, यानी जितनी पॉपुलेशन मेंटेन हम कर सकते हैं वो 2.1

0: पर है। तो अभी फिलहाल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन फीमेल फर्टिलिटी रेट 1.9 पहुंच गई है, यानी हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, इटली है सपोज
1: जी जी
0: करिए,
1: जी
0: या चाइना भी है, वो प्रमोट कर रहे हैं
1: सर
0: अपने
1: जी
0: यंग जनरेशन को कि
1: जी
0: शादी करें, बच्चे पैदा करें,
1: जी
0: तो
1: जी चाहिए
0: क्या
1: वो मैन पावर
0: जी
1: चाहिए
0: मैन पावर
1: और
0: हमारे
1: यंग
0: ऐसे
1: पावर
0: लोग जा रहे हैं
1: चाहिए।
0: उनको सस्टेन करने के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन सस्टेन करने के लिए। पूरा कॉन्टिनेंट डाइंग है, पूरे पूरे विलेजेस खाली हो रहे हैं।
1: जी
0: अब फीमेल फर्टिलिटी रेट के बारे में बता दूं, लेकिन सबसे ज्यादा फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है वो बीमारू स्टेट्स में है, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
1: जी
0: बीमारू स्टेट्स। तो इसमें यूपी की 2.6 है, बिहार की 2.9 है। अब आप उसको देख लें और दूसरों को देखें, केरला 1.5, केरला इज 100% एजुकेटेड,
1: बिल्कुल
0: जी
1: 100%
0: जी
1: एजुकेटेड है,
0: आप उसको ले लें,
1: बेहतरीन
0: कश्मीर
1: उनका
0: को,
1: तर्ज जिंदगी है।
0: जे एन के को ले लें 1.5, यानी नेशनल एवरेज से भी नीचे है।
1: जी
0: तो डिपेंड करता है कि ठीक है, हमारे वसाइल लिमिटेड है, हर कंट्री के वसाइल लिमिटेड है,
1: बिल्कुल
0: हमारे पास जो फर्टाइल लैंड्स हैं दे कैन सस्टेन, वो सस्टेन किया तभी आगे हैं।
1: जी
0: ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, तो ये सब चीजें हम जो पिछले दिनों में जो इम्पोर्ट करना पड़ता था, गेहूं और ये सब
1: जी वो
0: चीजें,
1: आज हम खुद पैदा कर रहे
0: खजनास,
1: हैं,
0: अब
1: हम
0: हम
1: खुद
0: खुद पैदा कर रहे
1: खुद
0: हैं।
1: कफील
0: तो
1: हैं।
0: सवाल ये है कि अपनी यंग जनरेशन को प्रॉपरली ट्रेन कर पा रहे हैं चाइना की तरह?
1: जी फजल भाई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर वो अच्छे से ट्रेंड हो और सही सिमत में चले, तो हम भी बड़े ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उनसे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी ज़मीन है, हमारा जो हुदूद व अरबा है अपने मुल्क का, और उसके अंदर पैदा होने वाली ग़ज़ाएँ हैं, जो अनाज है, क्या वो सब हमारी उस बढ़ती हुई आबादी के लिए काफ़ी है?
2: देखिए, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से जितने इदारे खोले जा रहे हैं वो उनके लिए नाकाफ़ी हो रहे हैं।
1: जी
2: उसकी वजह यह है कि वो आप कभी किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कहीं कोई आईआईटी में चले जाइए, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आपको
1: जी
2: वहाँ वैसे फैसिलिटी मिले मिले, लेकिन तब मिले ना। अच्छा, वो जो है एक तबका जो दौलतमंद है वो तो
1: सब कुछ
2: फ़ायदा
1: हासिल कर
2: उठाता
1: रहा
2: है,
1: है।
2: लेकिन जो गरीब है, जो मिडिल क्लास का है, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से यह है कि उसी की वजह है कि मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। बकौल के 80 करोड़ लोगों को हम फ्री अनाज दे रहे हैं,
1: जी
2: तो ये 80 करोड़ लोगों को अनाज देना क्या मकसद है? इतनी
1: उनको
2: बड़ी तादाद में फ्री अनाज दिया जाना, ये तो जो मुल्क के वसाइल हैं वो भी सब खत्म हो रहे हैं,
1: बिल्कुल, और लोग आदी हो रहे हैं फिर
2: आदि हो रहे
1: आराम
2: हैं सर।
1: तलबी के। डॉक्टर आजमी साहब, जिंदगी की बुनियादी तीन जरूरियात हैं,
0: रोटी
1: रोटी,
0: रोजगार
1: कपड़ा और
0: मकान।
1: मकान। वो हमारे मुल्क की इस बढ़ती आबादी को किस हद तक मैसर है बआसानी?
0: ये हमारे मुल्क के हालात जो हैं उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि 50% कम से कम लोग ऐसे हैं अभी जो बेघर हैं
1: जी
0: और बहुत ही सतही जिंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास तालीम है, ना उनके पास अपना कोई स्टेटस है, ना कोई मेयार है, ना कोई शऊर है। तो उस तरह की चीज़ों को देखकर लगता है कि सोसाइटी अभी हमारी बहुत ही अनकल्चर्ड बिल्कुल फील हो रही है।
1: जी
0: अगर वही एक एजुकेशन हो जाए उनके अंदर, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए, तो शायद वो और कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि मुल्क क्या है, तरक्की किसे कहते हैं, आबादी किसे कहते हैं, ज़िंदगी क्या है, इसको समझने का शऊर ही नहीं है। अगर ये तालीम और तालीमी बेदारी आ जाए लोगों में, तो शायद ये पता चले कि ज़िंदगी किसका नाम है, क्या सबसे पहले कपड़ा ज़रूरी है, कि पहले मकान ज़रूरी है, कि पहले रोटी ज़रूरी है। और ये हालात ऐसे बन चुके हैं कि रोटी तो मिल गई किसी तरह से, तो कपड़े नहीं मिले, कपड़ा मिला तो मकान नहीं मिला।
1: जी
0: तो वो कहीं ना कहीं कमी है। और जिस रेशियो में आबादी बढ़ रही है, वसाइल तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो दिक्कतें हैं आज और ऐसी होती रही। अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया, शायद आने वाले दिनों में फुटपाथ वाली ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फ्लैट की ज़िंदगी कम हो जाएगी। अच्छा, पॉल्यूशन का बढ़ना, बेरोज़गारी का बढ़ना, गुर्बत का बढ़ना, ये तमाम मसाइल जो है वो सब बेरोज़गारी और इससे आपके यहाँ बढ़ती हुई
1: तालीम के
0: आबादी से ताल्लुक़
1: पीछे।
0: रखते हैं।
1: जी
0: अगर आपने उसको सेल्फ कंट्रोल कर लिया, तो शायद धीरे धीरे हालात सबके बन जाएं और सब बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें।
1: डॉक्टर साहब, एक थिंकर ने कहा था कि हमारे जो वसाइल हैं वो 1, 2, 3, 4 के रेशो से बढ़ते हैं, जबकि आबादी जो है वो 2, 4, 6, 8, 12 के रेशो से बढ़ती है। तो हमारे मुल्क में जो तेजी से आबादी बढ़ रही है वसाइल के मुकाबले में, उसके वजह

0: सोशल
1: जी
0: सिक्योरिटी में पढ़ाई भी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है,
1: आसानी से वो सब कुछ कर सकती।
0: एम्प्लॉयमेंट।
1: जी
0: तीसरी चीज हेल्थ है, यानी
2: जी
0: उसको मालूम होना चाहिए उस फैमिली को कि मेरे पास दो बच्चे हैं तो वो जवानी तक पहुंच जाएंगे और अब हेल्थ हेल्थ
2: कहाँ
0: इश्यूज।
2: तक पहुंच सकते हैं।
0: उसके बाद बाद एक सिक्योरिटी का भी मसला है।
1: जी बिल्कुल
0: जब तक लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क में नहीं होगा प्रॉपर,
2: जी
0: तो डर और खौफ का जो माहौल है,
1: जी जी जी
0: वो डर और खौफ से जो दबे हुए लोग होते हैं वो अपने आप को ज्यादा असर्ट कर। आप गांव में चले जाइए, जिसका बड़ा खानदान होता है वो ज्यादा हावी होता है।
1: हावी
0: जी
1: हो जाता है। जी
2: जी
1: जी
2: जी
1: बेशक
0: आप प्रधानी के इलेक्शन में देख लीजिए
2: जी
0: जाकर,
2: जी जी जी
1: तादाद पर मुनहसिर करता
0: तादाद
1: है।
0: पर मुनहसर होता है।
1: जी
0: तो वहां पर जो ताकत है या प्रधानी का सपोज करिए या किसी और चीजें जो है, वो ये सोचता है जो कमजोर आदमी है या बगैर पढ़े लिखे फैमिली है, वो ये सोचता है कि मेरे तो हाथ पैदा हो रहा है।
2: जी
0: मान लीजिए वो आदमी जो है वो साइकिल के पंक्चर जोड़ रहा है, तो वो दो वो चाहिए उसको हाथ, तो वो चाह रहा है कि मेरा बच्चा मेरी जगह ले ले,
2: जी
0: दूसरा बच्चा
2: जी
0: दूसरे काम पे लग जाए
2: जी जी
0: या मजदूरी करने लगे।
2: लेबर
0: तो
1: प्रोडक्टिव
0: उनकी
1: तो सोच ये है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा हमारे माशी
0: ये
1: हालात बेहतर।
0: गवर्नमेंट को ये
1: बिल्कुल
0: कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देना पड़ेगा आपको।
1: जी बिल्कुल
0: एजुकेशन इंप्रूव करना पड़ेगी,
2: मेडिकल
0: हेल्थ
2: सेक्टर
0: इंप्रूव करना पड़ेगी, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का ध्यान करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना पड़ेगा, सोशल से
1: और
0: मतलब
1: इन सब
0: सिक्योरिटी
1: चीजों को
0: को।
1: इतना आसान करना पड़ेगा कि हर बंदे तक वो बआसानी पहुंच सके, हर
0: जी,
1: एक
0: एजुकेशन
1: उसका फायदा उठा सके।
0: एजुकेशन
1: अभी
0: सबसे आगे
1: आपने
0: है
1: एक बात
0: पॉपुलेशन
1: कही सिक्योरिटी
0: में।
1: के नजरिए से, तो उसी की वजह है शायद कि हमारे मुल्क में कम उम्र की शादियों का भी चलन बढ़ता जा रहा है,
2: बिल्कुल बात
1: हालात
2: आप
1: को
2: है।
1: देखते हुए कि जल्दी बच्ची को अपने घर का कर दो ताकि हम इसकी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो सके।
0: जी एजुकेशन जब तक हम इम्प्रूव नहीं
2: जी
0: करेंगे,
2: तब तो कुछ नहीं होगा।
0: सिक्योरिटी नहीं दे।
1: माँ बाप इस चीज से डरते हैं कि हम कब तक बच्ची की हिफाजत करेंगे, किस तरह उसे बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजें, किस तरह उसको कहीं हम जॉब के लिए भेजें, उससे बेहतर है इसे जल्द से जल्द अपने घर का कर दूं।
2: नहीं, ये तो खैर सोच है ही, चूंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं, सियासत असल में इन्वॉल्व है यहाँ
1: जी
2: कानून के अंदर या सिक्योरिटी के अंदर। अगर ये सब अलहदा हो जाए और कोई किसी ने पुलिस को आज़ादाना वो कार्रवाई की देते हैं, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सब हर आदमी अपने आप को तहफ़ महसूस करेगा। लेकिन तहफ़ किस लिए नहीं है कि जो जिसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी आबादी जैसी बढ़ेगी, जैसे एक गाँव है वहाँ पर जो एक बड़ी तादाद है, एक फिर एक ख़ानदान की,
1: जी
2: वो हावी होता, इसी के लिए यहाँ भी यही है कि वो तहफ़ नहीं मिल पा रहा है जो
1: जी
2: हमारी बच्ची हैं। इसलिए हर आदमी खौफज़दा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे संभाल कर रखूं।
1: डॉक्टर साहब, आप तिब्बी मैदान से जुड़े हुए हैं, इस सिलसिले में शरह अमवात जो कम हुई है नई दवाओं के जरिए, क्या वो भी हमारी बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार है? जैसे पहले होता था कि बहुत तरह की वबाएं फैलती थी, बीमारियां फैलती थी और बस्ती की बस्ती खत्म हो जाती थी, मोहल्ले के मोहल्ले खत्म हो जाते थे। अब हमारी दवाओं ने, हमारे नए नए टीकों ने इस तरह कंट्रोल कर लिया है उन चीज़ों पर, तो क्या वो भी जिम्मेदार है कहीं?
0: देखिए, ये तो एक मुल्क का या एक सोसाइटी का या एक सिविलाइजेशन का एक तरीक़ाकार होता है।
1: जी
0: वैसे ही टेक्नोलॉजिकल आजकल एडवांसमेंट्स कह लीजिए आप, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या हेल्थ में एडवांसमेंट्स या ये सब चीज़ें जब होती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड की डेथ के रेट है, आप
1: जी
0: जो
1: शराय
0: जिस
1: अमवात
0: जी,
1: कम।
0: तो वो ऑटोमेटिकली कम होती है। तो ये इट इज़ ए इंडिकेटर दैट आवर हेल्थ सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली,
1: जी
0: यानी
1: जी
0: हमारा हेल्थ सिस्टम सही है, उसमें गिरावट आ रही है और गिरावट फीमेल फर्टिलिटी में भी आ रही है। तो इसकी ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि हमारे बच्चे ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं या ज़्यादा एडल्ट एज को पहुँच रहे हैं। ये चीज़ को हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है और उसके लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं।
1: जी
2: आबादी जो बढ़ रही है रोज अफजो, उसको हमें कंट्रोल करना है।
1: उसमें इजाफे को रोकना है
2: हाँ, अब
1: जो।
2: इजाफे का क्या है, देखिए गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। अभी ये कानून बनाने की बात हो रही थी कि साहब जिसके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वो उसको टिकट नहीं मिलेगा या वो एम भी
1: सरकारी
2: नहीं हो
1: नौकरियों
2: सकता
1: में
2: है,
1: नहीं
2: सरकारी
1: आएगा। जी
2: नौकरी
1: हाँ
2: नहीं मिल सकती।
1: डॉक्टर आजमी साहब, ये जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आबादी को हम कंट्रोल करें, उसमें इजाफे की तरफ तवज्जो दें, तो उसके लिए ये जिम्मेदारियां सिर्फ हुकूमत की ही हैं या अवाम की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क को बेहतर वसाइल देने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए आम आदमी को भी ये सोचना पड़ेगा, या हुकूमत ही इसके लिए कोई ऐसा सख्त कदम उठाए?

0: नहीं, इसमें तो दोनों को सोचना पड़ेगा। एक तरफ एक पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी कि अगर आपने इन चीज़ों को इख्तियार किया तो ये नुकसान हो सकते हैं, उसको अपने प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस पब्लिक के अंदर लानी पड़ेगी।
1: जी
0: और हम खुद एक ज़िम्मेदार शहरी अगर हैं तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क, हमारा वतन या हमारा परिवार, हमारा समाज खुशहाल कैसे बने।
1: जी
0: खुशहाल बनने के लिए वसाइल का बढ़ना, आबादी का घटना, कम होना, मतलब ये
1: जी
0: दोनों ज़रूरी है। अगर दोनों रेशियो बराबर चलते हैं तो एक खुशगवार ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं, एक अच्छा माहौल
1: बिल्कुल
0: अपने मुल्क का बना सकते हैं। ये दोनों की ज़रूरत है कि दोनों अपनी अपनी पॉलिसी बनाएं और एक पढ़ा लिखा इंसान और सोचे कि हम हमारी
1: हमारी
0: ज़िम्मेदारी
1: क्या
0: क्या होती है।
1: जिम्मेदारी है। बिल्कुल
0: अगर वो ज़िम्मेदारी निभाता है तो कामयाब है, और नहीं निभाता है तो सबके सब नाकाम होगा।
1: तो हमारे जो आज का ये मुबाहिसा था, तबादला ख्याल था, इसका लुबलुबाव यही निकलता है कि जो बढ़ती आबादी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। हमारे जंगल कटते जा रहे हैं इसलिए कि हमें रिहाइश के लिए जगह चाहिए, हमें अपने बच्चों को आबाद करने के लिए घर बनाने हैं, पेड़ कट रहे हैं लकड़ी के इस्तेमाल के लिए, जिसकी वजह से हमारा जंगली जो जिंदगी है, जंगली जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं, जिससे फिजाई आलूदगी, तरह तरह की परेशानियां पैदा हो रही हैं, जंगली जानवर बस्तियों के अंदर दाखिल हो रहे हैं।
0: इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो रहा
1: जी
0: है।
1: हाँ, खेती की जमीन कम होती जा रही है। कहना बेजाना होगा कि एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और गांव शहर की वसत में खो गया। तो इन हालात को देखते हुए हम हर हिंदुस्तानी, बल्कि दुनिया के हर इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि हम उतनी ही आबादी अपने घर की, अपने खानदान की बढ़ाएं जिसे हम बेहतर वसाइल मुहैया करा सकें और जिसे बेहतर तालीम के साथ हम अपने मुल्क के लिए मुस्बत सोच वाला शहरी बना सकें,
0: बिल्कुल
1: ताकि वो हमारे मुल्क को, हमारे शहर को एक आइडियल मुल्क, एक आइडियल शहर बना सके और हम तरक्की की दौर में दूसरे ममालिक से आगे निकल सकें। तो सामीन, अभी हमने बढ़ती आबादी और हमारी जिम्मेदारी इस मौजू पर तबादला ख्याल किया, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हमारे मधु किए हुए जो मेहमान यहाँ तशरीफ लाए थे, एक बार फिर उनके बारे में आपको बता दें, हमारे साथ थे डॉक्टर इश्तियाक आलम आज़मी साहब, डॉक्टर महमूद अली खान साहब और जनाब फजल शाह फजल साहब। हम अपने मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस अहम मौजू पर अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप रामपुर मरकज़ पर तैयार आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की अपनी मेज़बान रबाब अंजुम को इजाज़त दें। अलविदा।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत लाइट म्यूजिक का ये प्रोग्राम अब से कुछ ही देर में।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
6: डॉलकर ही नहीं,
7: किनकर भी मिलता है,
8: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
9: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
10: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं सुखविंदर सिंह।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: श्रोताओं, सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं सुखविंदर सिंह, और अगले गीत के लिए एतबार साजिद का ये शेर अर्ज करती हूँ कि अजब नशा है तेरी कुर्ब में कि जी चाहे, अजब नशा है कि तेरी कुर्ब में जी चाहे, ये जिंदगी तेरी आगोश में गुजर जाए।

0: सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आप सुगम संगीत इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे थे। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री

0: क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुए युद्ध विराम समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिन में आज राजधानी दिल्ली में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम गाते गुनगुनाते अब से कुछ ही देर में।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत। हर
2: गाते गुनगुनाते कार्यक्रम में आप सभी का मैं श्वेता अभिनंदन।

वंदन करती हूँ। आप सभी की फरमाइशों के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये कार्यक्रम आपका है और आपसे ही गुलजार है। आइए पहली फरमाइश लेते हैं। फिल्म का नाम है दिल दिया दर्द लिया, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। सुनना चाहते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। और श्रोताओं इसी गीत की फरमाइश आई है। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के लिए गाना मैं पेश कर रही हूँ आपकी फरमाइश पर।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश आई है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिठा इस गीत को सुना चाहते हैं। और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी

तानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म से लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है नमक हलाल इस फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार आशा भोसले ने और फरमाइश की है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाईजान राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप। इसी गीत को सुना चाहते हैं पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा, साहिबा गुप्ता। आइए सुनते हैं ये गाना।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना

0: Aha!
1: अगली फरमाइश सुरेश जी गांधीनगर गुजरात से नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। इनकी फरमाइश रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में कोहिनूर फिल्म से है। साथ ही इन्होंने नाम लिखे हैं मंजुला राठौड़, विशाल और निशा के। निसार सलामी, नौशाद सलामी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने भी आदाब नमस्कार भेजा है, आपको भी मेरा सलाम। ये घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं और कहा है किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लूं। आप सबके लिए पेश खिदमत है कोहिनूर फिल्म से ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गाना आ रहा है मदर इंडिया इस फिल्म से, और फरमाइश आई है कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावले पुणे से हैं, अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने, आप हम सबको नमस्ते कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मदर इंडिया इस फिल्म से इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B-Pharma M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: स्वागत है आपका एक बार फिर गाते गुनगुनाते। ये प्रोग्राम आपकी फरमाइशों पर आधारित है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से श्वेता के साथ। जॉन डिकैस्ट्रो हम सबको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मॉर्निंग तो गुड आपकी भी हो जाएगी और हमारी भी। जी हाँ, फरमाइश आई है इम्तहान फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ साथ में फरमाइश करी है रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। अच्छा, आप सभी जनकपुरी सहारनपुर से हैं। इम्तहान फिल्म से आपके लिए ये गाना।

चुपके चुपके फिल्म की फरमाइश आई है जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा नामदेव और ग्राम लोहेडी जिला मोहाबा महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक की। आइए सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म से आपकी पसंद पर ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है दूसरा आदमी इस फिल्म से। इस गीत को सुनने की फरमाइश करी है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से साहिल भारती बघेला, उत्तम कुमार बघेला, रुक्मणी बघेला। इसी गीत को सुनने की फरमाइश करी है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गाने की फरमाइश आई है अनाड़ी फिल्म से, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांग, दुर्गा प्रसाद देवांग, पराग टेलर, पुनाराम देवांग और कृष्णा देवांग।

कार्यक्रम का अगला गीत है पलकों की छांव इस फिल्म से। पलकों की छांव इस फिल्म से इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, आशा भोसले, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत की फरमाइश आई है गांधी चौक बाड़मेरा मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार की।

श्रोताओं, इसी फरमाइश के साथ आपकी फरमाइश गाते गुनगुनाते ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। मैं हूँ आपकी अपनी श्वेता, अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, क्योंकि ज़िंदगी भी एक खूबसूरत धुन है, और फरमाइश करते रहिए। ये आकाशवाणी गोरखपुर है।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं, समय है समाचारों का, जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे अब से कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी और उनके वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर लगाए गए हैं। अमरीका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान समझौता ज्ञापन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग बस कुछ ही क्षणों में।
4: जिंदगी बहुत कीमती है,
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
7: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
8: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
9: और भरोसा।
8: जानो फिर मानो।

0: तो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
3: लोक रंग में आज के कलाकार हैं प्रभाकर शुक्ला।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
8: लोक रंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर शुक्ल को। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा फरमाइशी प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म ब्रदर्स से। संगीत था अजय अतुल का, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
0: गाते गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: आकाशवाणी गोरखपुर के इस सुरमय सफर गीतांजलि में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसलिए वर्तमान को मुस्कुराकर जीना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इसी संदेश को अपने सुरों में पिरोता है फिल्म कल हो ना हो का यह गीत।

प्रेम जब दुआ बन जाए तो हर एहसास ईश्वर का आशीर्वाद लगता है। फिल्म कुर्बान का यह लोकप्रिय गीत सलीम सुलेमान के मधुर संगीत और निरंजन अयंगर के खूबसूरत बोलों से सजा है। सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की आवाज़ इसे और भी यादगार बनाती है। सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अग्निपथ से। सोनू निगम की भावपूर्ण आवाज, अजय अतुल का संगीत और बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के। तो सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। फिल्म कभी अलविदा ना कहना का ये गीत प्रेम की उन्हीं भावनाओं को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है। जावेद अख्तर के शब्द, शंकर एहसान लाय का संगीत और सोनू निगम व अलका याग्निक की सुरीली आवाज़ इसे और विशेष बनाती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहना का ये गीत।

तो श्रोताओं, आज के गीतांजलि में बस इतना ही। उम्मीद है संगीत का ये सुरीला सफ़र आपको पसंद आया होगा। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम नाटक बेटी धान की बिहान।

0: प्रसूति गृह में कन्या के जन्म लेते ही माता पिता के मन में सोच व्याप्त हो जाता है, साथ ही लंबे भविष्य का सपना चलचित्र के भांति गुजर जाता है। पराया धन तो वो तभी से मान ली जाती है।
1: बेटी, पराया धन तो है जरूर, मगर वो दान स्वरूप दी जाती है। जितना भी दान प्रक्रियाएं हैं, कन्या

0: दान सर्वोपरि है। इसी दान के चलते सृष्टि की प्रक्रिया निरंतर है।
1: कन्यादान की प्रक्रिया एक विशेष संस्कार के तहत संपन्न होती है। भारतीय हिंदू समाज में 16 संस्कारों का प्राविधान है, जिसमें विवाह संस्कार का एक अलग महत्व है। इस संस्कार में पिता अपनी बेटी का हाथ योग्य वर के हाथ में सौंपकर कन्यादान संपन्न करता है।
0: स्नेह से पाली गई दुलारी बेटी विवाह योग्य होने को होती है, तभी से माता पिता चिंतित हो जाते हैं। बेटी के परोक्ष में आपस में चर्चा करते हैं।
2: सुन रहे हैं जी, बेटी 17वें में आ गई, वर कहीं रखा पड़ा नहीं है, अरे ढूंढना पड़ेगा, ये काम हाथ पर हाथ धरे नहीं होगा।
3: लग रहा है भोजन बना रही, घर का सारा काम, सबका देख रेख। यदा कदा रसोई घर में नजर डालता हूँ तो पुस्तकें भी पाता हूँ, पढ़ती होगी समय निकलने पर।
4: अम्मा, ये रही आपकी चाय और ये रहा बाबूजी का काढ़ा, भोजन भी बना कर रख दिया है। 2-4 दिन और क्लास है, मैडम जी का क्लास पूरा नहीं हुआ है ना, एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, समय से पहुंचना है। आप लोग वक्त पर भोजन कर लीजिएगा, बर्तन मत साफ कीजिएगा अम्मा।

0: बेटी तो सचमुच बड़ी हो गई, शादी योग्य। मैं निश्चिंत बैठा था।
1: आप आज देख रहे हैं, मैं तो रोज देखती हूँ ना, रात में कभी कभी नींद नहीं आती। फाइनल परीक्षा के बाद जब हर वक्त घर में रहेगी तो कई बार नजर आएगी। अभी तो दिन विद्यालय में और रात रसोई घर में कटता है।
0: ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो। आज मेरी आंखों का पट्टर खुल गया।

0: आपसी मंत्रणा एक दूसरे को प्रभावित करता है। पिता निकल पड़ता है बेटी योग्य वर के तलाश में, भटकता तो कई जगह है, कई दरवाजे पर फेरी लगाता है, हाथ जोड़ता है, पांव पड़ता है, अंततः मकाम पर पहुंच जाता है।
1: ये तो कहा ही गया है, ईश्वर बेटी का जोड़ा निर्धारित किए रहता है।
0: लगन पढ़ने के बाद हर काम की शुरुआत आदि शक्ति के आवाहन से संपन्न होता है।

0: बेटी घर में है तो द्वार पूजा होना ही है। बारात दरवाजे पर आते ही पुरुष सादर आमंत्रित करते हैं, नारियां मंगल गान करती हैं, पंडित मंत्रोच्चार करते हैं।
1: टोले मोहल्ले की औरतें दूल्हा निरखने उमड़ पड़ती हैं, बेटी तो सबकी होती है।
0: योग्य वर देख जन समुदाय कन्या के पिता को दाद देता है, वर देखने की आकुलता बढ़ जाती है। औरतों को पर्दा किया पर्दा भला कहाँ रख सकता है, झरोखों से कन्या भी एक झलक देख मन ही मन प्रफुल्लित हो अपने पिता के प्रति हृदय से आभार प्रकट करती है।
1: द्वार पूजा के बाद शुरू होता है आगे का सिलसिला। नाउन बुलौवा कहने चली जाती है और नाउ चला जाता है बारात में।
0: नाउ सुहाग का पानी लाता है, नाउ सुहाग का पानी लाता है, फिर नहावन का कार्यक्रम शुरू होता है। सांकेतिक पोखरा खोदने के लिए बुआ की आवश्यकता होती है, मगर वो सहज में तैयार होने वाली नहीं, नीग मांगती है, हट भी करती है।
2: अरे ननद जी, आपका जो हक है मिलेगा, हम लोग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देंगे, आप पोखरा तो खोदिए।
3: भाभी, हम पोखरा तो खोदेंगे ही, मगर जब भारी नेग लेंगे।
2: आप चिंता मत करें, जो आपको मिलना होगा मिल जाएगा।
3: आप कुछ भी कहें भाभी जी, मानूंगी नहीं। ससुराल वाले पूछेंगे भतीजी की शादी में क्या पाई हो, तो क्या कहूंगी। इतना दहेज देकर शादी कर रही हैं भाभी, और हमारे लिए इतना झिकझिक।

0: बुआ मनाई जाती हैं। आवश्यकता पड़ती है तो पुरुष वर्ग को भी मौके पर पहुंचकर संतुष्ट करना पड़ता है, है तो देना पड़ता है, नहीं तो वादा करना पड़ता है। तागपात एवं कुरहतन के लिए भसुर को माणों में आना पड़ता है। कन्या के लिए क्या चढ़ावा आया है सबके सामने होता है। औरतों की तो चांदी होती है, कभी कभी इतना तंग करती हैं कि यादगार बन जाता है।
1: फिर आवश्यकता होती है दूल्हे राजा की। इसके बाद का रस्म तो उन्हीं की उपस्थिति में संपन्न होना है। बारात में नाऊ को भेज वर बाबू को तो दरवाजे पर बुलाया जाता है।
0: घराती प्रेम पूर्वक विशेष आसन पर बैठाते हैं। नाऊ एक बार पुनः अंतर जाकर स्थिति का आकलन करता है और पंडित जी से पूछकर दूल्हे को माड़ों में ले जाता है। इस बार औरतें ढंग से देखती हैं और फूले नहीं समाती।
1: दो अनजाने एक साथ, यही तो है ब्रह्म विवाह की विशेषता और हमारे संस्कार एवं संस्कृत की महानता। वर कन्या लकड़ी के बने विशेष पीढ़े पर प्रथम बार एक साथ बैठते हैं और शुरू होता है दाम्पत्य सूत्र बंधन का प्रथम अध्याय।
0: दो दिलों के मिलन का प्रदर्शन दोनों पक्ष के लावा को मिलाकर किया जाता है। ये काम संपन्न कराता है कन्या का भाई।
1: मंत्रोच्चार की गूंज के साथ माता पिता एवं वर कन्या की उपस्थिति में संपादित होता है पाणी ग्रहण।

0: अब तो सिर्फ वही अवशेष रह जाता है जिसके लिए अब तक इतना कुछ हुआ।
1: सिंदूर जो विवाह का पर्याय है, चुटकी भर उठाकर दूल्हा कन्या की मांग में डालता है, क्षण मात्र में किसी की कन्या किसी की वधू हो जाती है।

0: अध्याय पूरा होता है। दोनों एक दूजे को मन ही मन अपना मान लेते हैं। कन्या की मांग दमक उठती है। माता पिता के मन में खुशी के भाव, आंखों में बिछोह के आंसू।
1: बेटी पराया धन है, दबा भाव उजागर हो जाता है, माया प्रबल हो जाती है।
0: भाभी, बुआ एवं अन्य औरतें बारी बारी मांग बहोरती हैं। साथ ही शुरू होता है स्नेह एवं प्रेम का परिचय।

0: बेटी धीरे धीरे माँ बाप से अलग होने लगती है। माँ बाप चाहते हुए बुला नहीं सकते और बेटी जा भी कैसे सकती, पास ही रहकर दूरी का एहसास।
1: बेटी जिस घर के कोने कोने में चहलकदमी करती थी, उसी घर के एक कमरे में बने कोहबर में अपने पति के साथ ले जाई जाती है। बहुसंख्य नारियों में होता है एकमात्र पुरुष दूल्हा। कन्या की सभी परिचित और दूल्हे के लिए सब अपरिचित।
0: भाभियों एवं सहेलियों के लिए सुखद अवसर होता है, वो रूबरू होती है दूल्हे से, खुलकर बात करने का मौका भी मिलता है, कोई डर और न कोई झिझक।
1: प्रहसन प्रसंग छिड़ता है, कन्या की जीत और दूल्हे की हार, यही लक्ष्य होता है कन्या की हमजोलियों का। चालाक दूल्हा भी लाचार हो जाता है, फिर भी गुदगुदाया जाता है, हंसाया जाता है।
0: रात बीत जाती है, भोर होता है, तब बारी आती है ससुर को माड़ो में आने का। पूजनोपरांत ससुर पुत्रवधू का माथ ढकते हैं, टीका लगाकर आशीष देते हैं।
1: समधी पांच भाई मिलकर माड़ो का बंधन खोलते हैं। यहाँ समधी मांग भी करते हैं, उन्हें संतुष्ट किया जाता है। दोनों पक्ष के लोग मिलन करते हैं, प्रसन्न होते हैं और अंदर शुरू होता है करुण क्रंदन।

0: Μαντρό με πει.
1: Μαντρό. Παππού, ο παππού. Τσαρδίου μου καπουλά.
0: Αμεντίου μου.
1: Γράκι με πει. Τσάι, ο τσαρμαγιά γερούρια. Αμεντίου.
0: Τσαρμαγιά γερούρια. Γράκι με. Κεμπρά με πει. Κεμπρά.
2: औरतें भाई को धैर्य बधाती हैं। वह डोली पर लाल उहार डालकर पर्दा करता है, नाउन कुल्ला कराती है।
3: चारों का हार प्रसन्न मुद्रा में डोली उठाते हैं और चल देते हैं गंतव्य की ओर। बेटी एक बार उहार हटाकर सजल नयन से परिजनों को निहारती है और दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चली जाती है।
2: बेटी धान की बेहन है, जिसे स्वजाय खेत से उखाड़कर पराए खेत

अभी आप सुन रहे थे नाटक बेटी धान की बिहान। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाने सुहाने में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बॉर्डर से। आवाजें हैं सोनू निगम अलका याग्निक की, गीत को संगीत दिया है अनु मलिक और बोल हैं जावेद अख्तर के।

अभिजीत भट्टाचार्य अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे हैं जुदाई फिल्म से ये गीत। संगीत है नदीम श्रवण का और बोल हैं समीर के।

0: बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। कुछ गीत अपनी सादगी और मधुरता के कारण समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते हैं। वर्ष 1994 में प्रदर्शित फिल्म मोहरा का ये सदाबहार गीत अपनी कर्णप्रिय धुन और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए आज भी श्रोताओं की पहली पसंद है। इंदीवर के सुंदर बोल, विजु शाह के संगीत और पंकज उदास तथा साधना सरगम की सुरीली आवाज़ में आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म से ये गीत।

मोहरा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम बस खुशी पलों में।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे रूना लैला को। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से थोड़ी देर में।

0: कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में अवामी दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने टेकुतार में मुनक्किद तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब में तीन असेंबली हलकों रामकोला, हाटा और कुशीनगर के लिए सड़क, तालीम, सेहत और आबपाशी से मुतालिक 525 करोड़ रुपए के 464 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर आला ने जलसा आम से खिताब भी किया। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
1: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
0: आज ही वजीर आला गोरखपुर के पिपराइच असेंबली हलके के इंद्र भाथड़ बंस्थान में 758 करोड़ रुपए के 24 तरक्याती कामों की नकाब कुशाई करेंगे। वो 697 करोड़ 49,000 रुपए की लागत वाली भाट भंस्थान चार लेन वाली सड़क समेत पांच सड़कों का इफ्तिताह भी करेंगे और 60 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से सड़क की तामीर और सयाहत से मुतालिक 19 तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पीर को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी की गैर जानबदाराना तहकीकात का मतालबा करने वाली कई अर्जियों पर समाअत करेगी। दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच के सामने होगी। इन दरख्वास्तों में इस वाकये की सीबीआई तहकीकात और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माली लेन देन का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑडिट का मतालबा किया गया है। कबल अज अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 मुलजिमान में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्रा राम मंदिर की तामीर कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए आज अयोध्या में हैं। राम मंदिर में पेशकश की चोरी के बारे में उन्होंने कहा कि खजांची गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि यह अपने आप में एक बदनुमा दाग है और हम सब खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब इंतजाम बेहतर होंगे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एहतियात की गिनती करने वाले 20 से ज्यादा मुलाजमीन ने बैंक वक्त इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों को एहतियात में

0: इस जब्तगियों के सामने आने के बाद निजाम में की गई तब्दीलियों से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान बाकी मुलाजमीन की ड्यूटी शेड्यूल और छुट्टियों में रद्दोबदल कर दिया गया है। एहतियात की गिनती के लिए हिफाजती इंतजाम भी सख्त किए जा रहे हैं। इस काम के लिए अब खसूसी अमले की खिदमत हासिल की जाएगी। माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए रियासती हुकूमत कल शजरकारी महायज्ञ 2026 का इनेकाद करेगी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के करीब एक पौधा लगाकर तकरीब का आगाज करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में पौधा लगाएंगे और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधा लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत रियासती हुकूमत ने 35 करोड़ पौधे लगाने का हदफ रखा है। मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने की मुहिम के तौर पर रियासत भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर मौसमी बीमारियों और दीगर बीमारियों की अलामत और उनसे बचाव के बारे में आगाही फराहम करेंगी। आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को आबादी में इजाफे से मुंसलिक चैलेंजों और मवाक़े के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद आबादी से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों की हौसला अफजाई करना है। इस साल आबादी के आलमी दिन का थीम है आज और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों का इदराक। रियासत के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से जानों और मवेशियों के नुकसान के वाकयात का नोटिस लेते हुए वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने अहकाम दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर नुकसान का अंदाजा लगाने और मुआवजा फराहम करने की हिदायत है। वज़ीर-ए-आला ने तमाम आला हुकाम को इलाके का दौरा करने और मुतासर खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की है। मानसून की बारिश की वजह से रियासत के कई अजला में नदियों की सतह बढ़ने लगी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, बस कुछ ही क्षणों में।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
6: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है,
7: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
8: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
9: सभी बहनों का नारी जगत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अस्मिता। बहनों, आज के कार्यक्रम में आपसे बात होंगी बहुत सी और साथ ही होगा मनोरंजन और ढेर सारी जानकारी की बातें। आज हम आपसे बात करेंगे आज के दिवस की। आज है विश्व जनसंख्या दिवस और बातें होंगी महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की, साथ ही परिवार नियोजन में पुरुषों की भूमिका और सबसे स्पेशल गृहिणी विशेष में हम आपसे बात करेंगे परिवार में बातचीत के महत्व का। तो बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दिवस से। आज है विश्व जनसंख्या दिवस जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जनसंख्या संबंधी समस्याओं को वैश्विक चेतना जागृत करना और यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में शुरू किया गया। यह 11 जुलाई को 5 विलियन दिवस के सार्वजनिक हित से प्रेरित था जिसकी

तारीख जिस पर दुनिया की आबादी 5 अरब लोग तक पहुंच गई। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य है विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर और लोगों को जागरूकता बढ़ाना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व को याद दिलाना। बहनों, जनसंख्या बढ़ोतरी बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसे हमें अनदेखा नहीं करना है। जनसंख्या न बढ़े इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। विश्व के हर एक व्यक्ति को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट बहुत ही बड़ी संकट को पैदा कर सकता है। जनसंख्या को आज हम बहुत ही बड़ा कारण मानते हैं, जिससे कि आर्थिक विकास और संसाधनों की उपलब्धता में भी कमी आ जाती है। और जनसंख्या के कारण पानी, भोजन, भूमि की कमी तो होती ही है, साथ ही जनसंख्या के कारण नौकरियों में भी बहुत सारी कंपटीशन की समस्या भी आ रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लोग गांव से शहरों में आते जा रहे हैं, साथ ही मलिन बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार होता जा रहा है। बहनों, साथ ही अस्पताल और स्कूलों पे भी इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है पर्यावरण। जी हाँ बहनों, पर्यावरण यानी कि प्रदूषण, कचरा बढ़ता ही जा रहा है, वनों की कटाई होती जा रही है और साथ ही आवास और सड़कों के लिए पेड़ दिन प्रतिदिन काटे ही जा रहे हैं। बहनों, बढ़ती जनसंख्या के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, और बढ़ती जनसंख्या से हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम जनसंख्या कंट्रोल पे भी ध्यान दें और साथ ही अपने पर्यावरण पे भी ध्यान दें, नहीं तो हमारा जीवन दोनों ही खतरे में होगा। बहनों, ये तो हुई विश्व जनसंख्या दिवस की बात। और देखिए, आज हमारे शहर का मौसम तो बहुत ही सुहाना है, तो आइए हम सब भी मिलके सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने सुना ताल फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। बहनों, बातें हो रही थी आपसे जनसंख्या की। जनसंख्या ना बढ़े इसके लिए महिलाओं के साथ पुरुषों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पुरुष घर परिवार के प्रधान होते हैं, उनका निर्णय सब मानते हैं, और जब पुरुष ही परिवार नियोजन को समझेंगे, परिवार का आकार तय करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। और गर्भ निरोधक उपायों को भी अपनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो वर्तमान में देश का एक अलग ही माहौल होगा। लेकिन भारत में वर्तमान में परिवार नियोजन का मुख्य भार महिलाओं पर ही है, जबकि पुरुषों की भागीदारी सीमित होती है। पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें परिवार नियोजन के कुछ तरीकों को भी शामिल करना होगा, जैसे कि कॉन्डोम। यह पुरुषों द्वारा अपनाया गया, उपयोग किया गया जाने वाला सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है, और ये आसानी से उपलब्ध भी है, जो अनचाहे गर्भ के साथ साथ कई यौन संचारित रोगों से भी बचाता है। इसके साथ दूसरा है पुरुष नसबंदी। यह पुरुषों के लिए एक स्थायी और 99% तक प्रभावशाली है, जो परिवार नियोजन विधि है। यह एक बहुत ही छोटी प्रक्रिया है जिसके साथ पुरुष सामान्य जीवन जी सकते हैं, और इसमें उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, शरीर पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता। बहनों, पितृसत्ता समाज में परिवार का आकार और बच्चों को जन्म देने के अंतराल से जुड़े अधिकांश निर्णय पुरुष ही लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पुरुष अपनी पत्नी के साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करें, महिलाओं को गर्भ निरोधक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, और साथ ही उनका मानसिक सहयोग भी करें। बहनों, अक्सर समाज में यह गलत धारणा बनी हुई है कि परिवार नियोजन के लिए केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। यह सोच बदलकर पुरुष एक जिम्मेदार जीवन साथी की भूमिका निभा सकते हैं।

बहनों, जैसा कि हमने आपसे बात की, पुरुषों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वह एक स्वस्थ माँ बन सके। महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य परिस्थिति पर निर्भर होता है। इसमें सुरक्षित गर्भ व्यवस्था, गर्भ निरोधक विकल्प है और प्रजनन संबंधी सामान्य विकार जैसे कि PCOS के बचाव भी शामिल हैं। स्वास्थ्य प्रजनन के लिए जीवन के लिए उचित हार्मोनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस समय आप संतुलित आहार लें। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल को भी शामिल करें और साथ ही कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड को भी उचित मात्रा में शामिल करें। साथ ही बहनों, वज़न का पूरा ध्यान रखें। वज़न कंट्रोल में हो, सामान्य वज़न बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अधिक या कम वज़न भी आपके ओवल्यूलेशन यानी कि अंडे निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित एक्सरसाइज करें। सप्ताह में कम 150 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपने शरीर को मजबूत बनाए रखें। नियमित जांच करवाते रहें। समय समय पर अपना मासिक चक्र, अनियमितता, अत्यधिक रक्त दर्द या किसी भी असामान्य लक्षण जैसे कि खुजली या असामान्य स्त्राव दिखे तो इसे नज़रअंदाज ना करें और नज़दीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें। बहनों, साथ ही अपना पूरा ख्याल रखें। और बातें तो अभी और भी इस गीत के बाद।

बहनों, अब बातें परिवार की। परिवार में आपसी बातचीत बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग आपस में संवाद करेंगे तो हमारी बहुत सी समस्याएं सुलझ जाती हैं। बातचीत और समझ मजबूत रिश्तों का आधार है। रोज़ाना हमें कम से कम 10-15 मिनट बिना डिजिटल रुकावट के एक दूसरे को समय देना चाहिए। ध्यान से उनकी बातें सुनना चाहिए बिना टोके, और सम्मानजनक और पॉजिटिव माहौल बनाना चाहिए। बहनों, इससे घर का माहौल खुशनुमा और सुरक्षित भी बनता है। हम सभी को चाहिए कि हम अपने समय में से कुछ समय परिवार के साथ ज़रूर बिताएं। जब कोई हमसे बात करे तो हमें चाहिए कि हम अपना मोबाइल, टीवी सब बंद करके उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुने। इसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। अपनी बात सीधे स्पष्ट तरीके से करें और सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। सहानुभूति दिखाएं और घर परिवार में एक नियमित समय दें। ये समय आपका कोई भी हो सकता है, या तो भोजन करने का समय, साथ में चाय पीना या टहलने की आदत। ये कोई भी समय हो सकता है जो आप अपने परिवार को दे सकते हैं। बहनों, जहाँ हो सके बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके विचारों में मतभेद होना तो स्वाभाविक है। हर घर में अलग अलग बातें होती हैं और हर घर घर की अलग समस्याएँ होती हैं। बस हमें चाहिए कि हम अपनी समझ से इन समस्याओं का निवारण कर सकें। बहनों, घर परिवार में तरह तरह के लोग रहते हैं, सबके सोच विचार अलग अलग ही होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको सबकी बातें अच्छी लगे। इस पे भी आप अपनी समझ से हर समस्या पर विचार करके इसका समाधान कर सकती हैं, जिससे कि परिवार की मिठास बनी रहे। मैंने परिवार में एक ऐसी जगह है जहाँ हम हर व्यक्ति अपने साथ हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, और हमारे साथ कोई भी समस्या हो तो हमारा परिवार हमारे लिए खड़ा रहता है। अपने परिवार के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं, और इसके साथ ही उन पे आप अपने कोई भी बात विचार उनसे खुल कर करें। परिवार के साथ समय बिताएं, और समय बिताने

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।

0: कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। आज का विषय है मछली का बच्चा खरीदते समय सावधानियां। बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर शशांक सिंह से विनय कुमार।
4: किसान भाई, आप लोग जब मछली का बच्चा खरीदे ली तालाब में डाले खातिर, वह समय छोट छोट बातन के अगर आप ध्यान न देव तो जितना आप उत्पादन चाहतनी ओकरे हिसाब से उत्पादन ना मिल पाई। एकरे पीछे बहुत कारण बा। आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़न हैं डॉक्टर शशांक सिंह। आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मनकापुर जनपद गोंडा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। ये बताएं कि जे मछली का बच्चा खरीदेला ओके कौन कौन ऐसा बात बा जेके ध्यान में रखे के चाहिए।
5: नमस्कार, सभी श्रोतागणों का स्वागत है और आपका धन्यवाद। मछली का बीज खरीदने के लिए सबसे पहले तो हम जिन मछलियों का संचय करना है अपने तालाब में उसकी पहचान करनी चाहिए और मछली खरीदने के तरीके को चार भाग में विशेष करके बांट सकते हैं। जहाँ बीज का एकत्रीकरण हो, उनका अवस्थापन हो, पैकिंग हो, लगभग 24 घंटे पूर्व से कोई आहार ना दिया गया हो। इसके साथ ही साथ इस अवस्था को कंडीशनिंग कहते हैं और 4 से 6 घंटे पहले उन्हें निकालकर किसी हापे में या तालाब में रख लेते हैं, जिससे कि मछलियों में एक हैबिट डेवलप हो, एक आदत बन जाए कि उनको जब हम पैकिंग करके दूर ले जाएं परिवहन करते समय तो उनमें कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि स्वस्थ मछली के बच्चों को खरीदने के लिए आप इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि मछलियाँ स्वस्थ हों और वो अच्छे से मूवमेंट कर रही हों, उनमें गतिविधि अच्छी हो। ऐसा ना हो कि वो बच्चे अगर शिथिल अवस्था में है तो उनको पहले ही निकाल दें पैकिंग करने से पूर्व।
4: मछली का बच्चा खरीदल जाओ तो कौना कौना प्रजात का होखे के चाहिए ताकि जब वो बढ़े तो उनसे अच्छा उत्पादन मिले।
5: जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, हमारे यहाँ मछलियों में मेनली मिश्रित मत्स्य पालन किया जाता है। आजकल कुछ किसान पंगेसियस मछली का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन मिश्रित मत्स्य पालन करने के लिए सबसे पहले कतला, रोहू, मृगल जिसको नैन भी कहते हैं, नैनी मछली, इन मछलियों के साथ ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प का मिश्रित मत्स्य पालन किया जाता है। लेकिन बाजार में चूंकि सिल्वर कार्प का रेट कम है और कॉमन कार्प आपके तालाब को खराब करती है, इसके लिए आपको मछलियों का जब स्टॉकिंग करना है, जब मछलियों का चयन करना है तो सबसे अच्छी सलाह ये होगी कि जो मछलियाँ सरफेस पे यानी तालाब के ऊपरी सतह पर रहती हैं, जिसमें कटला और सिल्वर कार्प है, जो मध्यम सतह पर ग्रास कार्प और रोहू है और निचली सतह पर मृगल और कॉमन कार्प है, तो इन मछलियों का चयन करें। लेकिन एक बात विशेष ध्यान दें कि आप यदि संभव हो तो मिश्रित बीज ना लें। मिश्रित बीज लेने में क्या होता है कि आपको सही अनुपात में मछलियों के बच्चे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि एक अनुपात बनाया गया है जिसमें अगर हम 3 मछलियों का पालन कर रहे हैं जिसमें कतला, रोहू और नैन है, तो हम 4-3-3 के अनुपात में उन मछलियों को डालते हैं, जिससे कि तालाब की जो व्यवस्था है वो बनी रहे, पारिस्थितिकी उसकी बनी रहे और सभी सतह पर भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे। इसके साथ ही अगर हम 6 मछलियों का पालन कर रहे हैं तो भी हम

0: इन भागों को, जैसे 20% कतला 100% में, 10% सिल्वर कार्प, 20% रोहू, 20% आप ग्रास कार्प और 20% मृगल और 10% कॉमन कार्प हम रख सकते हैं। इस प्रकार हम अपने तालाब की अगर 6 मछलियों का चयन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। आजकल वैज्ञानिकों ने एक जयंती रोहू है, बढ़ने की दर जिसकी अधिक होती है, और अमूर कार्प मछली को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिनका प्रयोग हम रोहू के स्थान पर और कॉमन कार्प के स्थान पर कर सकते हैं। यही नहीं, इन मछलियों का एकल पालन भी हो रहा है जो कि अत्यंत लाभकारी हो रहा है।
1: जब मछली का बच्चा हैचरी से खरीद के घरे ले जाओ तो ओकरे बीच में का सावधानी बरते के चाहिए, ठंडा रहे गर्म रहे, कैसे ले जाऊं अपने तालाब तक का छोड़ समय का सावधानी बरते?
0: देखिए, हमेशा ऐसे समय का चयन करना चाहिए जब मौसम थोड़ा शांत हो और ठंडा हो, क्योंकि सुबह का समय या शाम के समय को ही मछली का बीज चुनना चाहिए, ले जाने के लिए समय का चयन करना चाहिए। आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आपको दूर मछली का बच्चा ले जाना है, जहाँ 8 से 10 घंटे की यात्रा तय करनी है, तो आपको निर्धारित करना होगा कि आप खुली पैकिंग में बच्चे ले जाना चाहते हैं या बंद पैकिंग में। अगर खुली विधि से आप बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो गाड़ी में पाल बिछा के उसमें पानी डाल के और उसमें एरेशन के माध्यम से आप बच्चे ले जाएंगे, जो प्रायः बड़ी मछलियों के अवस्थापन के लिए, परिवहन के लिए यूज होती है। लेकिन पैकेट में बंद अगर आप पैकिंग करा के बच्चों को ले जाना है तो आपको दूरी के हिसाब से और मछली के आकार के हिसाब से आपको चयन करना होगा कि कितनी मछली एक पैकेट में हम लेके जाएं। तो प्रायः हम सुबह या साय का समय चुनते हैं जिससे कि बहुत अधिक धूप ना हो और उस पैकेट में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भरी हुई हो। फिर आप जब अपने तालाब पे पहुंच जाते हैं तो इन मछलियों को आराम से रखेंगे और उसमें धीरे धीरे सारी पैकेट का मुंह खोलेंगे और हल्का हल्का तालाब का पानी उसके अंदर आने देंगे, जिससे कि दोनों पानी का तापमान, जल का तापमान जो है तालाब के जल का और जिन पैकेट में मछलियां लाई गई हैं उनका तापमान बराबर हो जाए, तभी हमको मछलियों को अपने तालाब में छोड़ना चाहिए।
1: नर्सरी में कौन कौन बीमारी है जो उनके लग के आ जो जीरा बा फ्राई बा ओके नुकसान कर सकेले?
0: जी देखिए, प्रायः जो नर्सरी में बीमारियां होती हैं बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज की होने की ज्यादा संभावना होती है। इसके साथ ही साथ आजकल जो परजीवी होते हैं, आर्गुलस की बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा लगती है और उनके कारण बहुत ज्यादा हानि होता है। आर्गुलस मछलियों के शरीर से चिपक जाते हैं और उनके खून को चूस लेते हैं जिससे कि मॉर्टेलिटी होती है। और फंगल डिजीज में जो कि फफूंद जनक रोग होते हैं और बैक्टीरिया से जो कि जीवाणु जनक रोग होते हैं वो लगने की संभावना होती है। इसके लिए हमें तालाब में उचित संचय दर रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें तालाब का वातावरण जल साफ सुथरा रखना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्लवक की मात्रा मौजूद हो जो कि मछलियों को आहार के रूप में ग्रहण करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। इसके साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तालाब में बहुत अधिक कोई भी ऐसी जैसे पेड़ पौधे ना हो जिसमें कि जीवाणु या विषाणु या फफूंद जनक जो वो कारक हैं वो लोग शरण ले सकें। तो इन सब विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर सूरज निकलने के पूर्व के समय ऑक्सीजन की मात्रा को भी तालाब में निर्धारित करना चाहिए, देखना चाहिए और एरेटर के माध्यम से या फवारे के माध्यम से देते रहना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन की भी मात्रा बनी रहे।
1: डॉक्टर शशांक सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी देनी कि मछली का बच्चा खरीदत समय का सावधानी बरते के चाहिए और नर्सरी में छोड़ला के बाद कौना तरह से उनका पालन पोषण करे के चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई अभी सुन रहे थे बातचीत, जिस विषय था मछली का बच्चा खरीदते समय सावधानियां। बातचीत कर रहे थे डॉक्टर शशांक सिंह से विनय कुमार। ये आकाशवाणी का

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

0: while France progressed with a comfortable 2-0 win. The winners of tonight's quarterfinals will complete the semi-final lineup of the FIFA World Cup 2026. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand elevates ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 International in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
3: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है।

0: आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: INS महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत

0: दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए।

प्रीति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। संपन्न होती है हमारी यह प्रसारण सभा। FM बैंड पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ सायं 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार
1: दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
1: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
2: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
1: अच्छा।
2: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददिहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
1: जी,
2: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहाँ पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में 2-4 नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था। वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे, और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
1: जी।
2: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था, और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसओन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था, और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली, और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी हैं, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता हो।
1: जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है।
2: जी,
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर,

0: कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन ले।
1: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है।
0: बिल्कुल
1: फिल्म है आरती,
0: जी।
1: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो
0: तो
1: मुझे
0: मुझे
1: याद
0: याद
1: आया।
0: आया, क्या बात है क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
1: जी।
0: गीत।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो हैं तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ

0: नहीं है, लेकिन
1: हाँ
0: उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
1: जी,
0: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे, उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं।
1: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
0: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना, वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ, वरना आपको
1: जी
0: उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा,
1: जी
0: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
1: बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन
0: जी
1: रहा
0: जी
1: हमेशा।
0: जी
1: जी, तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
0: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला, और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी
1: जी
0: शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
1: जी
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे।
1: बिल्कुल
0: और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब
1: जी
0: नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे,
1: हाँ,
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको
1: फ्री
0: काम,
1: नहीं बैठे।
0: हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा, क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का, एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के
1: जी
0: प्रति,
1: जी जी
0: के इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं,
1: जी
0: नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, और उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है, कि
1: जी
0: कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है,
1: जी
0: और वही पूरे सामने था।
1: जी

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: तो अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार। उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ

0: मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं। और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
1: जी,
0: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी। लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया। वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
1: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
0: गुनगुनो ये तो आपने
1: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
0: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
1: जी।
0: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है।

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी
0: अच्छा, छुपकर
1: जी।
0: क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी। उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच, और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे
1: जी
0: पहला क्या
1: सब
0: लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में, भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस
0: क्या
1: यहीं
0: बात,
1: तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली
0: हाँ
1: में।
0: जी
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते हैं वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद, चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य।
0: जी
1: और चूंकि नौसिखिया थे, इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया,
0: सीखते
1: तब
0: हैं।
1: से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी, कई मैंने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी, महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ

0: लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
1: जी
0: गाने से,
1: जी
0: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊँ। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर
1: जी
0: हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज,
1: नीरज
0: उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया, और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड
1: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा।
0: जी।
1: लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
0: महानदी,
1: महानदी।
0: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं, वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं, कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं
1: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
0: जी। मेरी

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत है। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी,
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहाँ पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
0: बिल्कुल
1: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली,

0: मेंटली फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या। तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो। 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000। उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं, मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने, खाप पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: माध्यम
1: हाँ
0: बनी।
1: जी
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके। तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी
0: और
1: जी
0: इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
1: जी जी एक ज्वलंत विषय है ये, जिस
0: जी
1: पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर।
1: हमें तुम बुलाओ, क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इस गीत को।
0: जी

0: ही ना बहुत, जिसे बोलना चाहिए हंसी में बता रही है, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो वो भी लिख दो ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता
1: बिल्कुल।
0: है ना, आपका जो कैनवास है वो सिमट
1: सिमट
0: के
1: जाता।
0: फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास
1: बिल्कुल
0: आकाश है,
1: जी।
0: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
1: बिल्कुल।
0: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
1: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे
0: जी
1: एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
0: देखिए क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
1: हर पल हम सीखते ही हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए।
1: मैं सही
0: समय
1: कहा?
0: लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों को। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए, तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूं, मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद, मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूं कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी कि
1: आउटस्पोकन
0: आउटस्पोकन
1: जी
0: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं, या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं, तो ये तो स्त्री के साथ चलता

0: ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है।
1: जी
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो,
1: जी
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं। आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत।
0: उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं, जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी बन जाएगा,
1: जी
0: स्टार
1: जी
0: नहीं बनते हैं ना।
1: तो
0: जी
1: कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी कंपनी में हैं, किसी भी महकमे में वो काम कर रही हैं, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी
0: तब
1: ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो।
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो हैं ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में। तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है।
1: जी चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
0: जी

повязку.

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला सईद को।

नमस्कार, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 330.3 विश्व नितिन मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। पहले समाचार।

0: नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गया जी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुतनगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। एक दिवसीय श्रृंखला से पहले भारत की नजर ये मैच जीतने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेब 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ FM बैंड 10.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:05 और 24 सेकंड वे यही सुनते हैं तरुण साथियों के लिए उनका कार्यक्रम शिववाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, आज के इस युवावाणी कार्यक्रम में मैं प्रकृति आप सभी युवाओं का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज के सुविचार से। साथियों, जीवन में हमें विशेष तौर से एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि चाहे जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हमें अपने काम पर यानी कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जिसे लक्ष्य को हासिल करना होता है या कहीं पहुंचना होता है, वो असफलताओं को नहीं बल्कि उनसे मिली सीख को ध्यान देता है और उन सीख के माध्यम से वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंचता है। ये था आज का सुविचार, चलते हैं चर्चा की ओर। आज का युग डिजिटल युग है। शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, व्यापार, सरकारी सेवाएं और संचार जैसे लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों का सही, सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करना भी आवश्यक हो चुका है। यही क्षमता डिजिटल साक्षरता कहलाती है। डिजिटल साक्षरता व्यक्ति को एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और विभिन्न ऑनलाइन सेवा का सही उपयोग करना सिखाती है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान, टिकट बुकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, साथ ही विभिन्न सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, ई पुस्तकें और डिजिटल पाठ्य सामग्री सीखने के लिए डिजिटल साक्षरता एक अवसर आपको प्रदान करती है। डिजिटल साक्षरता आज के इस समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह केवल तकनीक का ज्ञान नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, जागरूकता और आधुनिक जीवन का आधार है। साथियों, अगर प्रत्येक नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर होगा तो वह न केवल अपने जीवन को सरल और सुरक्षित बनाएगा बल्कि देश के डिजिटल विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता अपनाकर डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। साथियों, ये थी चर्चा, आइए इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस अवसर पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जब इसकी वृद्धि उपलब्ध संसाधनों से अधिक होने लगते हैं तो ये शक्ति एक गंभीर चुनौती बन जाती है। बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष आज की तारीख 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, लैंगिक समानता तथा सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। आज विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण बेरोजगारी, गरीबी, आवास की कमी, जल संकट, प्रदूषण और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में इसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए छोटे परिवार को अपनाना, शिक्षा का प्रयास करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। विश्व जनसंख्या दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि समाज को जिम्मेदार और जागरूक बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। संतुलित जनसंख्या ही किसी राष्ट्र के सतत विकास और समृद्धि का आधार बन सकती है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक बने, दूसरों को भी प्रेरित करे, स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। ये था चर्चा। इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: साथियों, आइए लेकर चलते हैं आपको चर्चा की ओर। हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की सच्चाइयों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक विषमताओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ऐसे ही महान साहित्यकारों में भीष्म साहनी नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक प्रसिद्ध उपन्यासकार ही नहीं बल्कि नाटककार, कहानीकार, अनुवादक और प्रखर चिंतक भी थे। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को मानवीय मूल्यों, भाईचारे और सामाजिक समानता का संदेश देती हैं। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके साहित्य और विचारों को स्मरण करने का अवसर प्रदान करती है। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। उनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस भारत के विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक हिंसा का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। इस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हानुष माधवी जैसे नाटकों और अनेक कहानियों के माध्यम से समाज की समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी। 11 जुलाई यानी कि आज की तारीख 2003 को भीष्म साहनी जी का निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवंत हैं। उनकी पुण्यतिथि हमें यह प्रेरणा देती है कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने का सशक्त साधन भी है। उनके मानवीय दृष्टिकोण, सामाजिक चेतना और साहित्यिक योगदान का सदैव को याद रखा जाएगा। वास्तव में भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के एक ऐसे अमर साहित्यकार हैं जिनकी कृतियां आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। साथियों, यदि चर्चा, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक प्यारा सा गीत और लेकर चलते हैं आपको चर्चा की ओर। एक युवा होने के नाते मुझे लगता है कि अक्सर हम युवाओं में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, और आत्मविश्वास की स्थिति जब भी कमी होती है तो हमारे मन में ऊहापोह जैसी स्थिति बनती है। ऐसे में आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। ये व्यक्ति को कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में युवाओं के लिए आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साहस और दृढ़ता प्रदान करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत विकसित करें। ज्ञान और कौशल आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच रखें और अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद भी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाकर आत्मविश्वास को मजबूत करती है। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों की संगति अपनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा करें, और प्रत्येक छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को नई ऊँचाई देती है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से विकसित होने वाली शक्ति है। यदि युवा स्वयं पर विश्वास रखे, कठिन परिश्रम करे और निरंतर आगे बढ़ता रहे, तो वे जीवन की हर चुनौती का सामना करते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकता है। साथियों, ये थी चर्चा। इसी के साथ अब वक्त हो चला है प्रश्नोत्तरी का। कल का प्रश्न था, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार और, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, हर वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ साथियों, आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार और, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इसका उत्तर आपको कल के कार्यक्रम में दिया जाएगा। तो अब इसी के साथ आपकी दोस्त प्रकृति के जाने का वक्त हो चला है। मिलते हैं अगली बार कुछ नई और रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम शिववाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बच्चों के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: लड़का लोगन जय हिंद।
2: हाँ, तो ही नारे के साथ आज का अपनी बैठकी शुरू भइल। लड़का लोग हमन के बैठकी के बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कहें कि हमन के अपने बैठकी में तरह तरह के चर्चा कर जाला, उन्हन के ज्ञान वर्धन कर जाला। आज लड़का लोग 11 जुलाई है और आज के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनावल जात बा। ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनावल जाला और ये विषय कौन ध्यान में रख के कौन विषय केंद्रित रख के मनावल जाला, कहें कि इसमें लोगन के सीख और ज्ञान दिहल जाला, बतावल जाला कि जनसंख्या के कैसे हमन के नियंत्रित कर जा। इस साल के विषय बाटे युवावन के आशा और आकांक्षा के साकार करी बदे वर्तमान और भविष्य के खातिर, इस ध्यान में रख के जनसंख्या दिवस के मनावल जात बा। इस दिवस के मुख्य लक्ष्य बाटे कि बढ़त आबादी के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और सतत विकास के बारे में जागरूकता बढ़ावे के। इस दिवस के मनाए के शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 1989 से कर रहल और ये दिवस के मनाए के प्रेरणा 11 जुलाई 1987 के दुनिया का आबादी जब 5 अरब हो गई रहल, वही के लेके पहुँचने के बाद ऐतिहासिक दिन मनौले के घोषणा कर गई रहल। आज के दिन भारत और विश्व स्तर पर विभिन्न जागरूकता अभियान, रैली और परिवार नियोजन से संबंधित विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित कर जात बा। ए विषय के मनौला के पीछे मुख्य उद्देश्य बाटे कि बढ़त जनसंख्या के एगो चुनौती के बजाय मानव पूंजी के बदलने और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा।
1: भैया देखा, बत कही तो हमन के आगे चलत रही, लेकिन लड़का लोगन के पहले सुनवा देवल जाए एगो गीत।

0: घर जाओ। देखो मुन्नी, बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: लइका लोग सुनले बालगीत और कैले मनमन साइन। लइका लोग हमन के कार्यक्रम के इंतजार करबो करन एहे नाते कि हमन के कोनो कोनो उनके बतकही सुनवावल जाला और उनके बारे में ज्ञानवर्धन भी कल जाला। आज हमन के उनके सुनवावल जाई हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। ये विषय पर जानकारी देत बाटें डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह।
1: प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग पहचान होती है जिसे सर्वसम्मत से सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। राष्ट्र की पहचान राष्ट्र के प्रतीक एवं वहाँ के नागरिकों से होती है। देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपना अलग इतिहास व्यक्तित्व एवं विशिष्टता होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश के प्रतिबिंब हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर चुना गया है। राष्ट्रीय ध्वज, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसमें अनुपात पट्टी वाली तीन पट्टियां हैं। सबसे ऊपर

चक्र धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर राष्ट्र की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्वज का उचित प्रयोग एवं प्रदर्शन एक संहिता द्वारा होता है। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय झंडा संहिता 2002 ने लिया है। इसमें व्यवस्था है कि आम नागरिकों, निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं द्वारा ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय गान भी प्रमुख प्रतीक चिन्हों में है। राष्ट्रीय गान की रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1912 में तत्वबोधनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से हुआ, जिसे वर्ष 1919 में अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। पूरे गीत में 5 पद हैं। राष्ट्रगान में गीत के पहले 5 छंदों को अपनाया गया है। संविधान सभा ने इस गीत के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इसे गाने का समय 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम एवं अंतिम पंक्तियां 20 सेकंड में गाई जाती हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय शपथ एवं राष्ट्रीय प्रतीक भी प्रमुख प्रतीकों में गिने जाते हैं। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में संस्कृत में रचित इस गीत को लिखा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ साथ इसे भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। पूरे गीत का छोटा सा पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत है। इसे 65 सेकंड में गाया जाना चाहिए। यदुनाथ भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम इस गीत को संगीत धुन किया। फिलहाल इसे पन्नालाल घोष द्वारा बनाई गई धुन पर गाया जाता है। कैलेंडर, साका कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा 1957 में बनाया गया, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल, डेटा, समय भी लिखित है। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में वेदिमर्सी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी विद्यालयों में निर्धारित रूप में गाए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय प्रतीक को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष स्तर पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। राष्ट्रीय फूल हमारे यहाँ का कमल है। इसका प्राचीन भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। यह संदेश देता है कि जिस तरह यह कीचड़ में खिलकर तैरता रहता है और कभी नहीं सूखता, वैसे ही इंसान को लगातार श्रम करते रहना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी का सिंहासन है, जो धन एवं समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय फलों के रूप में देखा जाए तो आम को मान्यता मिली हुई है। यहाँ पर इसकी 100 से अधिक प्रजातियाँ विद्यमान हैं। राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी को सम्मानित किया गया है, क्योंकि देश के सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य इन्हीं के जनसंख्या इलाके में बसे हुए हैं। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह बहुत विशाल रूप में बड़ा होता है। इस वृक्ष की उम्र बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे अमर पेड़ भी कहा जाता है। भारत में हिंदू इस वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत में अब राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में हाथी को भी मान्यता मिल चुकी है। 31 अगस्त 2010 को हाथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महेश रंगराजन की सिफारिशों को मान्यता मिल चुकी है।

0: जिसमें हाथी बहुल राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए हाथी परियोजना आरंभ की गई है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर उज्ज्वल रंग की एकता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह देश की विभिन्नता को दर्शाता है, जो कि विभिन्नता में एकता का संदेश देता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्रिकेट की अत्यधिक लोकप्रियता के बावजूद हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 1928 से 1956 के बीच भारत को 6 बार लगातार गोल्ड पदक मिला था। उस समय भारत ने ओलंपिक में 24 मैच खेले थे और सब में विजय प्राप्त की थी। इस समय भारत में हॉकी की खेल को बहुत पसंद किया जाता था, जिस वजह से राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को प्रकट करता है, क्योंकि यह मात्र शुद्ध एवं मीठे जल में ही रह सकता है। प्लेटिनिस्टा गंगोटिका नामक यह मछली लंबे नोकदार मुख वाली होती है और इसकी आँखें लेंस रहित होती हैं, इसलिए ये मात्र प्रकाश की दिशा का पता लगाने के साधन के रूप में कार्य करती हैं। डॉल्फिन की घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। शक्तिशाली घ्राण शक्ति तथा प्रतिध्वनि निर्धारण की क्षमताओं से यह अपने शिकार का पता लगाती है। ये भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसलिए इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक सफलता को परिलक्षित कर रहा है। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया है। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर डी उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनरों में से चुना गया। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज से लेकर राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह तक सभी प्रतीक हमारी राष्ट्रीय पहचान को इंगित करते हैं।
1: लड़का लोग सुनते रहना हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। विषय पर जानकारी देते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह। इनके दिया जाए धन्यवाद।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: लड़का लोग अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ तो सुना जाए बाल गीत।

0: हाँ तो लइका लोगन देखी अपने कार्यक्रम का समय भी यही गीत के साथे पूरा भइल, काहे से मन एक समय सीमा में बदल हई। यही से अब यही के साथे लइका लोगन से लिहल जा विदा। लइका लोगन जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के रामकोला विकासखंड के टेकवा टार में 525 करोड़ रुपया की लागत वाला 464 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। ये मौका पर कई गो सरकारी योजना के लाभार्थियों के चेक और प्रमाण पत्र बटले के बाद मुख्यमंत्री कहले कि डबल इंजन के सरकार के अले के बाद कुशीनगर जिला का तस्वीर बदल गई हौ। प्रदेश सरकार के उपलब्धि गिनावत मुख्यमंत्री कहले कि पछला 9 बरिस में प्रदेश में न तो कौनो उपद्रव भइल और न दंगा।
1: ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है।

0: आपने देखा होगा पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता है तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं।
1: मुख्यमंत्री आज हुए गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के भटहट बांस स्थान में 4 लेन सड़क के सतह 5 गो सड़क का लोकार्पण और सड़क निर्माण अब पर्यटन विकास से जुड़ल 19 गो विकास कार्य का शिलान्यास कैले। इससे पहले आज भिन्न ही मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में जनता दर्शन कई के करीब 250 लोग इनके समस्या के सुनले और समाधान का भरोसा दियाले। पर्यावरण संरक्षण बदे प्रदेश सरकार बिहाने पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करी। एकर शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे के लगे पौधा लगा के करी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी में और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधा लगाई हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राज्य सरकार 35 करोड़ पौधा लगवने का लक्ष्य रख ले हवे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में प्रदेश भर से आज उसे दस्तक अभियान का शुरुआत भई। ये अभियान 31 जुलाई ले चली। एमे स्वास्थ्य विभाग का टीम घरे घरे जाके लोग इनके मौसम बीमारियन के सतही और यो बीमारियन का लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करी हैं। जौनपुर में आज अभियान में लोग इनके संचारी रोग नियंत्रण बदे जागरूक कई के दवाई का छिड़काव कई गई। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी का निष्पक्ष जांच का मांग वाला कई गो याचिका पर सोमवार के सुनवाई करी। ये याचिकन का सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन के पीठ के सामने प्रस्तावित हवे। ये याचिकन में घटना के CBI जांच, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट कैग से करावे का अनुरोध कैल गई हौ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का प्रोविजनल उत्तर कुंजी के लेके आपत्ति दर्ज कैले का तारीख उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय कैले हवे। अभ्यर्थी 14 जुलाई ले ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कई सकेले। सावन महीना में होखे वाला कांवड़ जत्रा का तैयारी जिला प्रशासन अब इन्हने से शुरू कई दिया लावे। बनारस में सुरक्षित अव्यवस्थित कांवड़ जत्रा पूरा करावे बदे पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ तय राहिन का निरीक्षण कर लें। ये दौरान वहाँ के श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ल बिंदुअन का समीक्षा कर लें। दोनों अधिकारी निर्देशित कर लें कि जत्रा के दौरान कौनों श्रद्धालु के कौनों असुविधा ना हो ई सुनिश्चित कर जाओ। प्रदेश के कई गो जिला में पिछला 2 दिन से रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। बरखा के नाते तापमान में गिरावट दर्ज कर गई हो और लोगों के उमस भरल गर्मी से राहत मिलल हो। मौसम विभाग के हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलन में अगला 3-4 दिन ले गरज चमक के साथ रुक रुक के बरखा हुई। उधर प्रदेश के कई गो जिला में भारी बरखा से हो रहल जनहानि और पशुहानि के घटना का संज्ञान लेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से नुकसान का आकलन कई के 24 घंटा में मुआवजा देवे का निर्देश दिया लिया हुए। मानसूनी बरखा के नाते प्रदेश के कई जिलन में नदियन का जलस्तर बढ़े लागल हो। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरा के चिन्ह के लगे पहुँच गई हो। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ल हो। एक देखत जिला प्रशासन सतर्क हो आ सुरक्षा का सज्जो उपाय कई लिहल गई हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर के रामकोला विकासखंड के टिकवा टार में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

0: किया। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में प्रदेश में न कोई उपद्रव होता है और न दंगा।
1: ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता है तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। आपने 9 वर्ष में आपने देखा होगा कोई उपद्रव नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में अब सब चंगा, अब यूपी में सब अच्छा है, कोई दंगा नहीं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप जन्माष्टमी का डोल निकालिए, आप दुर्गा पूजा का शोभा यात्रा निकालिए, आप रामनवमी की शोभा यात्रा निकालिए, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं।
0: मुख्यमंत्री ने आज ही गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के भटहट बांस स्थान में 4 लेन सड़क सहित 5 सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 19 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में जनता दर्शन करके करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कल पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के समीप पौधा लगाकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रदेश भर में आज से दस्तक अभियान की शुरुआत हुई। ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। जौनपुर में आज अभियान के अंतर्गत लोगों को संचारी रोग नियंत्रण के लिए जागरूक करते हुए दवा का छिड़काव किया गया। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर आपत्ति दर्ज करने की तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निर्धारित की है। अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारी जिला प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है। वाराणसी में सुरक्षित और सुव्यवस्थित कांवड़ यात्रा सम्पन्न कराने के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ निर्धारित मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा की। दोनों अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न होना सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। वर्षा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस भरी भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 3-4 दिन तक गरज चमक के साथ रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। उधर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश से हो रही जनहानि और पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मानसूनी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र में टांडा मुरादाबाद मार्ग पर आज सुबह एक कार ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना कार चालक को नींद आने के चलते बताई जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पंचों जय जवान जय किसान। भैया देखा नारा लगल बैठकी शुरू भइल और अपन किसान भाई लोग भी अपने कार्यक्रम के सुने के बदे अपने रेडियो सेट के साथे आ गई हुई हैं। काहे से उनके उम्मीद रहला कि कार्यक्रम में कुछ नई जानकारी रोचक जानकारी मिली जोने से अपने कृषि के वो अपन और उन्नत बना सके हैं भैया।
5: और साथे साथ अपने कृषि को उन्नत बनावे के साथ साथ पर्यावरण के भी सुरक्षित कर सके और भी तरह तरह के हमन के जानकारी ये कार्यक्रम में दिया जाला।
4: देखिए भैया होला का जब गर्मी के मौसम आवाला शुरू होला तो जलस्तर नीचे भागे लगला तो बहुत लोग कहले पानी ना आओ तो वाटर लेवल नीचे हो गए नल पानी ना पकड़ता तो यह तरह के भी समस्या होले और हमन के का कहल जाला कि जीवन में जोन बा जल ही जीवन ऐसन कहल जाला लेकिन जल के दुरुपयोग भी वही कहल जाला भैया और जल के संरक्षण और संचयन के बहुत जरूरी बा। ये कहले के उद्देश्य हमारी बा इस समय कि बरसात के मौसम शुरू हो गई बा भैया और बरसात जल होता तो ओके ज़्यादा से ज़्यादा बचौले के उपाय कैल जा ओकरे संचय कैले के व्यवस्था कैल जा भैया।
5: काहे कि अगर इस समय जल संचित कैल जाए तो आगे आए वाले समय में जब जल का संकट हो तो उस समय हम ओकर उपयोग कर सकेली या भूजल स्तर बढ़ा के भी हमके ओके उपयोग कैल जा सकाला। इस नाते भू जल का संचय कैल बहुत आवश्यक है और एक खातिर अगर केहू के घर बाँटे तो घर के ऊपर के भी जल के संचय कैल जा सकाला और बाहर बाग बगीचा या खेती बाड़ी जोन बाँटे ओमें गड्ढा कई के भी जल के संचय कैल जा सकाला। काहे कि जल के संचय अगर बरसात एक बैग होत बाँटे तो जल अगर गड्ढा खोदल गई बाँटे तो गड्ढा में अगर पानी इकट्ठा हो तो धीरे धीरे भू जल के स्तर बढ़ाई और हो सके तो जहाँ कोनो घर बनल बाटे घर के बाहर जो नाली बाटे नाली के संपर्क कोनो गड्ढा से कैल जा कि वो जो पानी बरसा के बाटे वो सीधे नाली के माध्यम से गड्ढा में जा तो उसे भी भू जल का संचय हो सकाला।
4: भैया देखा बत कही तो हमन के चलते रहे लेकिन आई किसान भाई लोगन के सुनवा दे पहले एक गीत।

0: भैया लोग हमन के बात करते हैं वर्षा जल संचय के बारे में, और वर्षा जल संचय में संचित जल के उपयोग जो बाटे वो बागवानी में कपड़ा धोले के बर्तन के साफ करे के ओकरे बाद से अगर हो सके तो अगर ओकर अच्छे तरीके से संचय कर जाए और पानी के साफ कर जाए तो ओके आरओ और यूवी विधि से फिल्टर कैले के बाद इस्तेमाल पीएलए में भी कर जा सकाला। लड़का लोग आह्वान के बात कही में बात कर जाए उर्वरकों में मिलावट के जांच कैसे कर जा इस विषय पर जानकारी देते बाटे हैं जयप्रकाश सिंह, उनसे लिहल जा जानकारी और उर्वरकों मिलावट के जांच कर जा।
1: किसान भाइयों, खेती बाड़ी खेती किसानी में कुछ कृषि निवेश हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ती है, जिसमें मृदा आपके पास है, सिंचाई के साधन आपके पास है, बीज और उर्वरक प्रायः आप बाजार से खरीदते हैं। उर्वरकों का वर्तमान जो खेती का प्रचलन है इसमें बड़ा महत्व है, कारण उन्नत प्रजातियां और अधिक से अधिक उत्पादन पाने की इच्छा। किसान भाई, आपके मन में यह बात आती होगी कि जो हम बाजार से उर्वरक खरीदने जा रहे हैं, जैसे यूरिया खरीदते हैं, डीएपी खरीदते हैं, फास्फेट खरीदते हैं, पोटाश खरीदते हैं, जिंक खरीदते हैं, और आज के समय में तो कुछ जैविक खादें भी प्रचलन में है जिनको आप प्रायः अपने खेतों में जैविक खेती और मृदा संरचना को बनाए रखने के लिए खरीदते हैं, तो आपके मन में यह इच्छा होती होगी कि जो हम बाजार से अपना खरीद रहे हैं, अपनी पूंजी लगा रहे हैं, वह कहीं गलत उत्पाद, गलत प्रोडक्ट, गलत खाद तो नहीं मिल रही, या नकली या मिलावट।

खाद जिसको कह लीजिए, ऐसी कोई खाद तो नहीं मिल रही है जिसके ले जाने से आपके पैसे की बर्बादी हो रही हो, आपकी मृदा संरचना खराब हो रही हो और आपको इसका लाभ न मिल पाता हो। तो किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी आप बाजार में जाएं तो खाद खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको यूरिया खरीदनी है, डीएपी खरीदनी है, जिंक सल्फेट खरीदना है, फास्फेट खरीदना है, पोटाश खरीदना है। तो इस तरह की खादें प्रायः खुले हुए कभी नहीं लें, जब भी लें तो इनको बोरों में या पैकेट में पैक हो तब लेना चाहिए। दूसरी जानकारी कि सभी खादों का, दवाओं का, बीजों का एक निश्चित अवधि है, एक निश्चित जीवन है, उस जीवन के अंतर्गत ही हो। कोई ऐसी खाद न ले लें जो बहुत पुरानी हो, 10-5 साल से रखी हुई हो, तो उसमें उन जो पोषक तत्व तो पाए जाते हैं वो पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे। अब किसान भाई यह जानना चाहेंगे कि अगर वो यूरिया खरीदने जा रहे हैं तो कैसे वह जान पाएंगे कि यह यूरिया नकली है कि असली है। किसान भाइयों, बड़ा सीधा सा और बड़ा आसान आपके घरेलू पहचान के लिए हम बताएंगे कि आप जब कभी भी यूरिया खरीदने जाएं तो आपने बोरों को, हमने पहले ही बता दिया कि सिले हुए पूरे पैक बोरे लें, उस बोरे को आप खोलें और खोलने के बाद से उसमें अपने नंगे हाथ को डाल दीजिए। आप हाथ को बाहर निकालेंगे, आपके हाथ पर देखेंगे आटे जैसा कुछ जो है पाउडर लगा हुआ होगा। अगर वो पाउडर थोड़ा है, थोड़ा मीन्स कि बहुत हल्के, जैसे घर में पहले जो है आटा वगैरह बोरी में डालते हैं या भंडारण करते हैं, हल्की फुल्की लग जाता है, उतना है, तब तो यह मान के चलें कि यह यूरिया लगभग ठीक होगी। दूसरी पहचान उसी के साथ आप देखेंगे कि जो दाने होंगे यूरिया के वो लगभग एक समान होंगे और गोल होंगे। तीसरी पहचान यूरिया की, जो आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं कि आप एक गिलास लीजिए शीशे का और उसमें 2 चम्मच यूरिया डाल दीजिए, उसको आप चला देंगे, देखेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर एक घोल तैयार हो जाएगा। वह घोल जैसे बर्फ के पानी में ठंडापन महसूस होता है, उस तरह का ठंडापन महसूस होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है तो यह मान लीजिए कि इस यूरिया में या तो मिलावट है या यह बहुत पुरानी यूरिया है। और एक और सरल सा तरीका है पहचानने का कि आप यूरिया के उसी घोल को, जो आपने घोल बनाया है, वो आपके घर में कोई रोटी बनने वाला गर्म तवा हो या आपके घर में किसी और पात्र में जहां पर जो है आप आग से गर्म कर सकते हैं, वहां पर आप डालेंगे तो आपको पानी और उसी के साथ साथ जो यूरिया में नत्रजन है वह भी आसमान में उड़ के चला जाएगा। कोई भी दाग, कोई भी पाउडर उस बर्तन में नहीं बचेगा। ये तो यूरिया के लिए पहचान हो गई। इस समय प्रायः सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी खाद है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। सभी किसान ये चाहते हैं कि हम मिक्सचर न तैयार करें, हमें डाई अमोनियम फास्फेट बाजार से लिया और खेत में डाल दिया। इसकी सबसे अच्छी पहचान है, गांव में अक्सर किसान खैनी खाता है चूना के साथ, तो आप उसमें से एक चुटकी चूना लीजिए, 1 चम्मच आप डीएपी लीजिए और उसको मिला करके अपने हाथ पे जैसे सुरती मसलते हैं वैसे मसल दीजिए। मसलने के बाद से उसको आप सूंघेंगे तो बहुत तीक्ष्ण, मैं इतनी तीक्ष्ण गंध आएगी कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वह गंध नहीं आती है तो निश्चित रूप से जो यह डीएपी आप लाए हैं इसमें कोई कमी है। दूसरी पहचान डीएपी की है कि आपके घर में जब कभी भी खाना बन जाए तो उस तवे पर आप 4-6 दाने डीएपी के डाल दीजिए। तो जितने बड़े दाने आप डाले होंगे कम से कम उससे दूने आकार में वह हो जाएंगे। अगर वो बड़े होकर के दुगने आकार में हो जाते हैं तो यह मान लीजिए डीएपी सही है। अन्यथा की स्थिति में यदि वो यथावत बने रहते हैं या पिघल करके पानी जैसे होकर के गल के खत्म हो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह अच्छी गुणवत्ता की डीएपी नहीं है। तीसरी एक पहचान और है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने बाजार से खरीदा या बाजार में ही खरीदने गए हैं, आपके मन में लग गया कि भाई हम ये कैसे संतुष्ट हो जाएं कि ये डीएपी जो हम ले जा रहे हैं ये सही है। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है, 4-6 दानों को आप लीजिए डीएपी के और नाखून से उसको कुतरने की कोशिश करें। जैसे गांव में आप कोई अनाज है प्रॉपर सूख गया कि नहीं, तो दांत के नीचे करते हैं कट की आवाज होती है, दूध शुद्ध है कि नहीं उसमें उंगली डाल करके और कहीं बूंद टपकाते हैं जो है, देखते हैं कि ये शुद्ध है कि नहीं। इसी तरह से उसको नाखून से कुतरने की कोशिश करें, डीएपी जो शुद्ध होगी वो नाखून से आसानी से कुतरी नहीं जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि उसकी जो कोटिंग होती है वो सख्त होती है। अब तीसरी जो खाद प्रायः किसान जो आलू उगाते हैं या जो सरसों की खेती करते हैं वो डालते हैं फास्फेट। कुछ लोग उसे सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, कुछ लोग उसको जो है ग्रेनुलर सुपर फास्फेट कहते हैं। दोनों फास्फेट के पहचान का एक तरीका यह है, जैसा हमने आपको बताया कि डीएपी के दशा में जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसकी साइज में परिवर्तन हो जाता है, फास्फेट जब आप गर्म करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीधी सी पहचान डीएपी से इतर इसीलिए कई बार देखते हैं कि ग्रेनुलर जो फास्फेट होती है, दानेदार जो फास्फेट होती है, उसको डीएपी के बोरों में या डीएपी खाद के साथ मिला करके किसानों के साथ धोखा हो जाता है। तो उसके पहचान का सबसे आसान तरीका यह है

कि आपको यह देखना है कि जो फास्फेट आपने परचेज किया है उसको जब आप गर्म कर रहे हैं तो किसी भी तरह से जो है उसमें कोई आकार में वृद्धि नहीं होगी, जो है फूलेंगे नहीं जो है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं आजकल बाजार में, एनपीके भी मिल रहा है, 12-32-16 मिल रहा है, 20-20-0, ये सभी आकार में परिवर्तित होंगे, फास्फेट परिवर्तित नहीं होगा जो है। चौथा, जो खेती किसानी में रोग की स्थिति में लगता था जिंक, अब उसका प्रयोग बहुत ही कॉमन हो गया है। जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो मैग्नीशियम सल्फेट सस्ता प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट ही प्रायः किसानों को मिल जाता है जिंक सल्फेट कह करके। इसमें किसान को यह सावधानी बरतनी है कि भाई जो आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं, आपके घर में हमने बताया कि डीएपी आप ले गए हैं, 2 चम्मच डीएपी आप ले लीजिए, पानी में उसको घोल दीजिए, 1 चम्मच उसमें जिंक डाल दीजिए आप। अगर फटे दूध जैसा ऊपर कोई एक परत बन जाती है गिलास में जहां पर आपने घोल बनाया है डीएपी का, तो यह मान लीजिए कि यह सचमुच में जिंक है। और अगर घोल में कोई फटा ऊपर से पोर्शन नहीं दिखाई देता है, कोई आपको छाछ जैसा ऊपर नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह मैग्नीशियम सल्फेट है। एक और छोटी सी पहचान है इसकी जो है कि जिंक सल्फेट को पतला कास्टिक घोल में अगर आप इसको मिलाएंगे जो है, तो इसमें एक मटमैला सा अवक्षेप फिर उसी तरह का जैसे फटे दूध को होता है, नीचे पानी दिखाई पड़ता है ऊपर दूध जैसा, उस तरह का एक अवक्षेप बन जाएगा जो है। और यह दोनों नहीं बनता है तो इसका मतलब यह है कि यह जो जिंक सल्फेट आप प्रयोग कर रहे हैं यह मिलावट युक्त है। तीसरी पहचान पोटाश के बारे में, पोटाश का रंग प्रायः जो है गेरुआ होता है, कई किसानों को तो भट्ठे की जो ईंट होती है उसके बुरादे को मिला देते हैं, कुछ लोग मोरंग मिला देते हैं। किसान भाई एक आसानी से पहचान समझिए, जब भी गेरुआ या भट्ठे का ईंट होगा आप उसकी को जल के साथ पानी के साथ घोलेंगे तो वो एक दूसरे में लेई जैसे हो जाएंगे और पूरे पानी का रंग लाल हो जाएगा। जबकि पोटाश की विशेषता यह है कि उसको आप नम करते हैं तो आपस में उसके दाने चिपकेंगे नहीं, या तो आपने अपने घर पे देख लिया कि उसके दाने किसी भी दशा में चिपकेंगे नहीं जो है। दूसरी चीज क्या होगी जो है कि पानी में आपने बताया कि एकदम साफ पानी आप एक शीशे गिलास में लीजिए और उसमें 1 चम्मच पोटाश को डाल करके चला दीजिए, चला करके थोड़ी देर प्रतीक्षा करें आप, तो देखेंगे कि एक लाल सा हिस्सा पानी का, नीचे पानी दिखाई देगा सामान्य रंग का, ऊपर कोई 1-2 इंच जो है उस गिलास में आपको लाल रंग का एक अवक्षेप दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो वो पोटाश सही है, क्योंकि गेरुआ रंग मिलाया हुआ होगा, भट्ठे की अगर जो है चूरन मिलाई हुई होगी जो है, तो वो पूरे पानी का रंग लाल दिखाई देगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों को एक और जानकारी देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि खेती किसानी में लागत बढ़ रही है, हमारे किसानों को जो है उनके मन वांछित उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, और किसान यह भी कई बार पूछता है कि भाई अगर हम गलत खाद डाल देते हैं तो हमारी मृदा उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि घर में हमारे आपके यहाँ जोरन पड़ता है, जिन लोगों को जोरन की मात्रा, जोरन का समय, दूध के तापक्रम का अंदाजा है, उनकी दही बनती है, अन्यथा वह जो है ना तो दूध बनता है न दही बनती है, वो फट जाती है। इसी प्रकार से अगर आपने संतुलित और अच्छे उर्वरकों का प्रयोग किया है तो आपकी खेती किसानी में मृदा संरचना ठीक हो जाएगी, यदि आपने मिलावटी खादों का प्रयोग किया है तो आपको मनवांछित उत्पादन नहीं मिलेगा और आपकी जो मिट्टी की संरचना है वो प्रभावित हो जाएगी। किसान भाइयों इस समय आप लोग जैविक खादों का भी प्रयोग करते होंगे, जैविक खादों में कंपोस्ट हो सकती है, जैविक खादों में वर्मी कंपोस्ट हो सकती है जिसको गांव में केचुआ वाली खाद कहते हैं, या ट्राइकोडर्मा हो सकती है, तो इनके भी पहचानने के आपके कुछ गुण हैं जिनके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। और वह जानकारी इस प्रकार से करें आप कि आपको किसी भी स्रोत से ट्राइकोडर्मा मिला, जैव उर्वरक मिला, आप क्या करें कि अपने गांव में जो भी मिट्टी का गोबर का घूरा है उसमें सड़ी हुई खाद, पकी हुई खाद का 1-2 किलो मात्रा ले लीजिए, उसको आप छाये में कहीं साफ सुथरी जगह पे रख लीजिए, उसमें 2 ढक्कन ट्राइकोडर्मा का आप डाल दीजिए, या जिस भी जैव उर्वरक का परीक्षण करना चाहते हैं उसको उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद से क्या करें कि कोई फटे हुए जूट का बोरा हो, गांव का में आपके पुआल हो, उससे उसको ढक दीजिए और सुबह शाम रोज उस पर इतना पानी डालिए कि पूरी नमी उसमें बरकरार रहे। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि रुई जैसे एकदम बिल्कुल लच्छा बन करके आप अपने पुआल को हटाएंगे तो उसके पर पाएंगे। अगर वह रुई जैसा कोई चीज नहीं दिखाई पड़ता है, आपको उसमें फफूंद जैसी कोई रचना नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसका मतलब कि उसमें ट्राइकोडर्मा या जैव उर्वरक में जो जीवाणु होने थे, जो बैक्टीरिया होने थे, वह उचित मात्रा में नहीं थे। इसी प्रकार से जब कभी भी बर्मी कंपोस्ट की बात आपसे की जाए तो आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि बर्मी कंपोस्ट में सभी केचुए काम नहीं आते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि जय गोपाल केचुआ की प्रजाति बर्मी कंपोस्ट के लिए काम आता है, तो उसकी

0: चट्टान का बड़ा आसान सा तरीका है, केचुआ से आप लोग परिचित हैं, एक हिस्सा उसका थोड़ा सा पतला होगा और दूसरा हिस्सा मोटा होगा। इस पहचान के साथ अपनी खेती किसानी को आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपकी मृदा संरचना बनी रहेगी।
1: पंच भाई हमन के सुनत रहनी उर्वरकों में मिलावट के जांच कैसे कर जाए, ये विषय पर जानकारी देते रहना जयप्रकाश सिंह, इनके दिया जाए धन्यवाद और लगले हाथ सुन जाए लोकगीत।

0: पंच भाई हेमन के सुनत रहनी शास्त्री यादव और उनसे साथी की आवाज़ में एक देश गान, और यही के साथे हमन की घड़ी के सुई सारा कही रहा बा कार्यक्रम के समाप्त करे बदे बिहने फिर मिल जाई यही समय, तब तक खातिर पंचों
1: जय जवान जय किसान।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित किया गया।

0: E a ser prepta सोचना के अनुसार विद्या के लापता होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। उम्र है 14 वर्ष, रंगोरा, लंबाई लगभग 5 फीट, ये दिनांक 29 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें, मोहन निषाद, ग्राम आमघाट, थाना रसड़ा, जिला बलिया। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8052162579। मोबाइल नंबर एक बार फिर से, 8052162579। रामप्रीत राजभर अपनी पुत्री रितिका कुमारी के लापता होने की सूचना हम तक देते हैं। रितिका कुमारी की उम्र है 13 वर्ष, रंग सांवला, ये दिनांक 14 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें, रामप्रीत राजभर, उड़सरा, सलीमपुर, थाना पकड़ी, जिला बलिया। टेलीफोन नंबर है 8054431207। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8054431208। अमरनाथ पटेल अपनी पुत्री सत्या पटेल के लापता होने की सूचना हम तक देते हैं। सत्या पटेल की उम्र है 15 वर्ष, रंगोरा, लंबाई 5 फुट 1 इंच, ये दिनांक 11 जुलाई 2024 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें, अमरनाथ पटेल, ग्राम पोस्ट नरही, थाना नरही, जिला बलिया। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9984792190। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9984792190 का है, ये उपनिरीक्षक का नंबर है। निधि सिंह के लापता होने की सूचना इनके पति संदीप सिंह हमें देते हैं। निधि की उम्र है 30 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फुट 5 इंच, ये दिनांक 2 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें, संदीप सिंह, ग्राम पियरी, थाना गढ़वार, जनपद बलिया। टेलीफोन नंबर है 9554007701। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9554007701। सोनम कुमारी के लापता होने की सूचना हम तक पहुंची हुई है। सोनम कुमारी की उम्र है 20 वर्ष, लंबाई 5 फुट 3 इंच, रंगोरा, ये दिनांक 4 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस पते पर सूचित करें, उदयभान राजभर, ग्राम शाहपुर आफका, पोस्ट तिलमा, जमालुद्दीनपुर, थाना उभाव, जिला बलिया। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9695242719। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9695242719। कोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
3: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
4: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
3: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
4: स्वच्छता अभियान सबकी

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: अभी आपको लोकगीत सुना रही थी सविता त्रिपाठी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। देश हमार का ईश्वर मेले जया सुनिए। काव्य पाठ कवि हैं धर्मदेव सिंह आतुर।
1: ननद भौजाई का रिश्ता बड़ा मधुर है। भौजाई अपने ननद के सुहाग खातिर का कहती है, कैसे कैसे का मांगती है, गीत में सुनी। सुर

अभी आपको अपनी काव्य रचनाएं सुना रहे थे धर्मदेव सिंह अतुर। अब आज का दिवस हमारे कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारा प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवाते हैं मालवी निवाड़ी गीत।

A fi chan si sangi dhe gaisham me. Maal vini vani gi sun rahe te. Ye agash vani Gorakhpur hai. Lije suni aaj ke pramukh gaishamo ki sankshipt roop rekha. Ab se kuch hi der baad aap sunenge pradeshik samachar hamare Lakhnau kendra se. Vishwa Jansankhya Divas par ekagra. Ek vishesh radio report aap sunenge. 7:31 par. फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 7:45 पर. हिंदी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे काव्य पाठ. कवि होंगे सत्यनारायण पथिक. समय याद रखिएगा आज रात 8:00. 8:15 पर आप सुनेंगे एम्स गोरखपुर के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर एम्स गोरखपुर के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार एवं कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर बिभा दत्ता की संयुक्त प्रेस वार्ता पर केंद्रित ओबी रिपोर्ट. 8:30 पर होगा हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम. कलाकार होंगे गुलाम अली. हिंदी में समाचार हम आपको सुनवाएंगे 8:45 पर और अंग्रेजी में समाचार होंगे 9:00. स्पॉटलाइट कार्यक्रम सुनेगा 9:15 पर. 9:30 पर होगा संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम. 11:00 सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार. हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं. मीडिया वेव 330.03 मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड 16.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. 7:18 और 32 सेकेंड वे कुछ पलों में आप लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
1: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण अभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

0: उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
1: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी, और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकासखंड के टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है, साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
0: अयोध्या में आज श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
0: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन

AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीसी पंत ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में 7 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: यह आकाशवाणी गोरखपुर है, लीजिए सुनिए विश्व जनसंख्या दिवस पर एकाग्र एक रेडियो रिपोर्ट। संकलन एवं वचन शेफकत अली खां का है और प्रस्तुति नूर मोहम्मद की।
2: श्रोताओं, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर हम लाए हैं एक रेडियो रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर करुणाकर राम त्रिपाठी ने जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए

0: पूरे विश्व के लिए एक जो ये भ्रम है कि जनसंख्या नाम सुनते ही जैसे लगता है कि ये बहुत भारी बर्डन है, बोझ है,
1: जी
0: लेकिन ऐसा है नहीं। पहली बात तो ये भ्रम दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या से ही सोसाइटी के लिए जो चाहिए, उत्पादन चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उन संसाधनों में से एक संसाधन जो होता है श्रम शक्ति, पूंजी है, टेक्नोलॉजी है, ये सब तो है ही है, मशीनें हैं, उपकरण हैं, लेकिन एक उसमें एक प्रमुख जो होता है श्रम शक्ति, लेबर फोर्स। क्योंकि श्रम शक्ति के बिना कोई भी और भी संसाधन, चाहे पूंजी, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे मशीन उपकरण, इन सब का बिना श्रम के सहयोग के उत्पादन हो नहीं सकता है। समाज के लिए कोई उपयोगिता का सृजन नहीं हो सकता है। तो इसलिए जनसंख्या केवल एक बर्डन नहीं है, यह एक इसका पॉजिटिव आस्पेक्ट है। ये एक ऐसा एक फैक्टर है, एक ऐसा क्रिया है, जनसंख्या वृद्धि जिसे आप कहें, या जनसंख्या किसी भी समाज की, किसी भी देश की, वो एक पॉजिटिव रूप में वो देश के लिए, समाज के लिए लेबर फोर्स को प्रोवाइड करती है। लेकिन हाँ, एक उसका दूसरा पहलू है कि ये जो फैक्टर है, ये जो कंपोनेंट है संसाधन का, जैसे कैपिटल है, मशीन है, उपकरण है, इसमें भी इसकी भी ज़रूरतें होती हैं, समय समय पे इसके रख रखाव की ज़रूरतें होती हैं, और नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो ये सब लोग इस पे करते हैं। उसी तरीके से जो लेबर फोर्स है, इसमें आस्पेक्ट होता है मानवीय पहलू, और इसकी अपनी अपनी, बल्कि ये फैक्टर अपने आप में ही एक तरीके से ज़रूरत उत्पन्न करता है। जनसंख्या बढ़ती है तो जरूरत भी उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ संसाधन उपलब्ध कराता है, लेकिन साथ ही साथ जनसंख्या की आवश्यकताएं होती हैं। तो इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, तो एक तरफ तो पॉजिटिव आस्पेक्ट ये है कि समाज के लिए एक संसाधन मिलता है, जिसका उपयोग करके हम समाज के लिए उपयोगी चीज़ें उत्पादित कर सकते हैं, उनके लिए सुविधाओं को विकसित कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं, स्कूल चला सब कर सकते हैं जनसंख्या की सहायता से, लेबर फोर्स से। लेकिन साथ ही साथ जब लेबर फोर्स बढ़ता है किसी भी समाज में, तो एक लाइबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनके परिवार की आवश्यकताएं होती हैं, उनको आय की ज़रूरत होती है। अब अगर वो बेकार रह जाएंगे तो फिर समस्या समाज के लिए उत्पन्न होती है। इसलिए जनसंख्या को ये निगेटिव आस्पेक्ट्स के रूप में ज़्यादा देखा जाता है।
1: जनसंख्या पर अपने विचारों के साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आलोक कुमार गोयल।
2: किसी भी देश के लोग यदि शिक्षित होते तो यह विचार जरूर करते हैं कि जो हमको सरकार से मिल रहा है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकॉनमी में, ये सोचते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जब अधिक होती है, जहाँ पर शिक्षा का अभाव हो, जहाँ जागरूकता का अभाव हो, सूचनाएँ कम मिल रही हों, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे तरह का माहौल बनता है कि हमको सिर्फ प्राप्त करना है सरकार से, वो एक निर्भर रहते हैं, एक तरह के बोझ के रूप में अर्थव्यवस्था पर। ये परिवर्तन तभी आता, मैंने जब कहा पहले ही कहा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जनसंख्या और जनगणना के बारे में बताते हुए डॉक्टर शिराज वजी।
3: तो अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऐसे वक्त पे आ रहा है कि जब पूरे हिंदुस्तान में हमारी जनगणना, हमारी सेंसस जो है वो अभी शुरू हुई है, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से एक आध साल के अंदर नई जो पॉपुलेशन की जो एक फिगर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग अलग लाइवलीहुड ऑप्शंस के अंदर, वो हम लोगों के साथ जल्दी अर्बन और रूरल का जो डिवीजन है उसके साथ आएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नई, जिसका खुलासा भी होगा कि किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, वो तो एक बात हुई, पर पॉपुलेशन का ट्रेंड भी एक होता है कि अर्बन रूरल कैसे है, किन चीज़ों के अंदर लगा हुआ है, मकान किस तरीके के हैं, किस तरीके की चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सेंसस में आती हैं। बहरहाल, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि अभी किस तरीके, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अभी आ रहा है, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे, उसके अंदर हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, तो ये तो एक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को देखते हैं।
4: जी डॉक्टर साहब, ये पॉपुलेशन का काउंट करना किसी भी देश की पॉलिसी मेकर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है?
3: पॉपुलेशन सिर्फ गिनती नहीं होती है कि कितने लोग हैं, लेकिन साथ में ये भी होता है कि हम

0: पॉपुलेशन को किस तरीके से देखते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि अभी हम लोगों का ये सोचना है कि हिंदुस्तान में अर्बन आबादी, शहरी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रूरल में कम हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो रही है, लेकिन शहरी इलाकों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके बहुत सारी वजह हैं।
1: एक स्वस्थ भारतीय नागरिक प्रदान करने में जिला महिला चिकित्सालय की भूमिका पर बताते हुए प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जय कुमार।
2: हमारे यहाँ पर गर्भधारण के समय से लेकर के और प्रसव तक का सारा इंतजाम किया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें जरूरी ये होता है कि प्रसव से पहले कम से कम 3 बार गर्भवती माताएं आकर दिखा लें, तो उसके लिए हम लोग एंटीनेटल चिकित्सा यहाँ पर देते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, वो अल्ट्रासाउंड भी हम लोग यहाँ पर कराते हैं, खून की जांच यहाँ पर हम लोग कराते हैं।
3: जी, एक स्वस्थ नागरिक देश को देना, ये कितना महत्वपूर्ण है?
2: ये एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, और कहा यह जाता है कि जो अच्छी ज़िंदगी होती है वो सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी गर्भधारण निरोध का कारण है। आप देखिए, पहले जब बाल बच्चों के बारे में लोगों को अनिश्चितता होती थी, पता नहीं इसमें से कितना जिएगा कितना नहीं जिएगा, इस तरह की अनिश्चितता जब होती थी तो लोगों के घर में 8 बच्चे 9 बच्चे तक होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टीकाकरण के माध्यम से, जैसे अच्छी चिकित्सा के माध्यम से हम लोगों ने जिंदगी का स्तर अच्छा किया, तो अब धीरे धीरे धीरे धीरे लोग समझते हैं कि जो ही 1 बच्चा है 2 बच्चा है, पढ़े लिखे अच्छा बढ़िया आदमी बने, वही ठीक है। तो इस तरह के वातावरण में जब वही बच्चा बढ़ेगा, टीकाकरण समय से पाएगा, इलाज अच्छा पाएगा, वो एक स्वस्थ नागरिक बनेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाएगा तो वो जो है वो एक पढ़ा लिखा नागरिक बनेगा, देश की सेवा अच्छी कर पाएगा, परिवार को देख पाएगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
3: तो आपका पर्सनल अनुभव क्या है डॉक्टर, ये जनसंख्या के बारे में, कि आजकल लोग जो माइक्रो फैमिली की तरफ बढ़े, यानी 1 या 2 बच्चे रह रहे हैं, वो ज़्यादा सुखी रहते हैं कि ज़्यादा जिनके ज़्यादा बच्चे वो सुखी रह रहे हैं आजकल?
2: लोगों की रुझान अब छोटे परिवार की तरफ ही हो रही है कि जैसे कम ही बच्चे हैं लेकिन उसका वो ध्यान रख सकें, उसको अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छी रिहाइश दे सकें, तो लोगों का रुझान तो इसी तरफ है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम अपनी जनसंख्या को उतना ही बढ़ाएं जिसको हम लोग अच्छी परवरिश अच्छी रिहाइश दे सकें, और जिससे हम लोगों का देश एक खुशहाल देश बन सके। बस एक अपील करना चाहूँगा कि अच्छाई अपने दिल से शुरू होती है, दिल से शुरू करें, अपने घर तक ले जाएं, अपने मोहल्ले तक ले जाएं, अपने शहर तक ले जाएं, राज्य और देश तक ले जाएं। जब सारे लोग अच्छा सोचेंगे तो हमारा देश अच्छा बनेगा। इसी तरह उन्नति भी अपने से शुरू करें, देश तक पहुंचाएं, ताकि हमारा देश एक अच्छा विकसित उन्नत देश बन सके।
1: जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर की स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना सिंह गर्भवती महिलाओं की महत्ता के बारे में बताते हुए।
4: गर्भवती स्वस्थ महिला से ही हमारे स्वस्थ समाज का विकास होता है। जब भी एक महिला गर्भ धारण करती है तो वह गर्भधारण के समय ही वह अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो वह स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में दिक्कत होगी। स्वस्थ बच्चा रहेगा तो ही स्वस्थ समाज रहेगा। गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए उन्हें गर्भधारण से पहले ही अच्छे खान पान के लिए, बीपी और शुगर अगर है तो उसके कंट्रोल के लिए, और नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए सलाह दी जाती है। इसके अलावा मानसिक रूप से भी महिला को स्वस्थ होना पड़ेगा। इसके लिए घर का माहौल तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए और आपसी संबंधों में सौहार्द रहना चाहिए। आज विश्व जनसंख्या दिवस है तो इस उपलक्ष्य पर मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्भधारण के समय आप नियमित रूप से सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। जो भी ब्लड टेस्ट अल्ट्रासाउंड आपको एडवाइस हो रहा है उसको नियमित रूप से कराइए, और आप अपने

0: और प्रसूति रोग विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। अगर वो कुछ भी खाने पीने में आपका कुछ बढ़ा रही हैं या कुछ वर्जित कर रही हैं, उसको नियम से फॉलो करिए। रेगुलर चेकअप्स के लिए आइए, जहाँ पे आपका वेट, बीपी, पल्स, बच्चे की धड़कन सब जांच होती है। अगर हम ये नियमित रूप से करेंगे, हमारा ब्लड बिल्कुल 10 ग्राम से ऊपर रहेगा, नियमित हम ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे, नियमित रूप से जो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट और जो भी सप्लीमेंटेशन हमको एडवाइस किया जाता है वो हम नियमित रूप से रखेंगे, इसके अलावा बच्चे के घूमने पे हम ध्यान देंगे, तो ज़रूर से हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते। पर आज के परिवेश में लोग माइक्रो फैमिलीज प्रेफर कर रहे हैं, जैसे एक बच्चे या दो बच्चे। कभी कभी किसी कारणवश अगर पहले बच्चे में कोई विकलांगता है या बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं, तब लोग तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं, नहीं तो मिनिमम दो बच्चे या एक बच्चे पे ही लोग आजकल रुकना चाह रहे हैं।
1: ये छोटे फैमिली की भी क्या फायदा होता है आम जनमानस के लिए?
0: देखिए, छोटी फैमिली होने से पहले तो उस महिला पे, क्योंकि महिला को ही बच्चों को, अधिकतर महिला ही बच्चों को घर पे देखती है।
2: जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताते हुए आशा वर्कर श्रीमती राधा पांडे,
3: सुरक्षा में उनको 5,000 लाभार्थी को पहले बच्चे पे मिलता है। दो लड़की हुई, दूसरी भी लड़की हो गई, पहली भी लड़की हो गई, तभी भी उनका बच्चा जब तक 18 साल का हो जाएगा तभी भी उनको पैसा मिलेगा पढ़ाई के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सरकार से मुझे सुविधा मिल रही है, ऐसा नहीं है कि लाभार्थी हमारी नुकसान है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को इस चीज़ का लाभ मिल चुका है, वो ले रही हैं, संतुष्ट भी हैं। आंगनबाड़ियों से भी लाभ मिलता है, राशन हर महीने उनको मिलती है, हर महीने वो जाते हैं बुलाते हैं, 5 साल तक के बच्चों को राशन मिलता है। लाभार्थी को जितना पेट में बच्चा है 9 महीने में उनको राशन हर महीने मिलता है। यही सब जागरूक 0 से 5 साल तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखती हैं, लाभार्थी को बुलाती हैं, उनकी सूची बनाती हैं, उनको कुपोषित से बचाती हैं। मेन मुद्दा हमारा यही है कुपोषित से बचाने का। तो हम लोग का सहयोग और उनका सहयोग दोनों का मिला होता है, हम दोनों लोग उसमें मिले होते हैं तब कुपोषित से बच पाते हैं।
2: इसी के साथ ही रेडियो रिपोर्ट का ये अंक समाप्त होता है। वाचन व संकलन शफकत अली खान का था और प्रस्तुति श्री नूर मोहम्मद की।
4: विश्व जनसंख्या दिवस पर एकाग्र भी आप एक रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे, वाचक और संकलन थे शफकत अली खान और प्रस्तुतकर्ता नूर मोहम्मद। यह आकाशवाणी गोरखपुर है। आइए सुनते हैं फिल्म का संगीत का कार्यक्रम आज का संगीतकार। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए सुने कार्यक्रम का पहला गाना। मोहम्मद रफी की आवाज़ में गीतकार हैं मजरूह और फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
2: आज का संगीत कैश फिल्म संगीत इस कार्यक्रम में जब सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत पैलेल के संगीत बद कुछ फिल्में गाने दीजिए। सुनी लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, गीतकार मजरू।

0: महबूब की मेहंदी। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर को सुना, गीतकार थी मजरूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम आज का संगीतकार अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेब 330.03 मीटर यानी 900 किलो हॉर्ट्स एवं FM बैंड 110.1 मेगा हॉर्ट्स पर। हिंदी का में लीजिए सुनिए सत्यनारायण पथिक से उनकी कुछ काव्य रचनाएं।
1: आपके समक्ष कुछ गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

जो तुम आ गया मधुमास जीवन पुष्प सौरभ से भरे, आ गया मधुमास जीवन पुष्प सौरभ से भरे, प्रश्न सारे मौन ऐसे छा गए जो तुम, प्रश्न सारे मौन ऐसे छा गए जो तुम।

गए जो तुम प्रश्न के उत्तर कुहक से बोलते हो जाओ, प्रश्न के उत्तर कुहक से बोलते हो जाओ, दृष्टिपथ में भेद रस के घोलते हो जो, दृष्टिपथ में भेद रस के घोलते हो जो, खुल गए कपाट बन स्वतंत्र गंध गूजते, खुल गए कपाट बन स्वतंत्र गंध गूजते, मिलिंद बृंद मोद द्वार खोलते हो जो, मिलिंद बृंद मोद द्वार खोलते हो जो, खुले शकल अंध बंध आ गए जो तुम, क्या कहूँ मेरे हृदय को भा गए जो तुम, मिल जाए जो दीन मीन को अथाह जल, धीवरों के क्रूर काल जाल से निकल, धीवरों के क्रूर काल जाल से निकल, मिल गई खुशी की जैसे वेदना पिघल गई, मिल गई खुशी की जैसे वेदना पिघल गई, छू हृदय के तारे अश्रु हैं गए मचल, छू हृदय के तारे अश्रु हैं गए मचल, खुले शकल अंध बंद आ गए जो तुम, क्या कहूँ मेरे हृदय को भा गए जो तुम, क्या कहूँ मेरे हृदय को भा गए जो तुम। अगला गीत आपको दे रहा हूँ। फिर सुनहली किरण होगी फिर छाएगी मेघमाला, फिर सुनहली

मैं आकता हूँ, छेड़ो ना मुझको हे प्रहरी, पीने दो अब जहर का प्याला, फिर सुनहली किरण होगी, फिर छाएगी मेघमाला, रक्त सिंचित है यह धरती, हर दम यही कहता शिवाला। अस्मिता की बात पर चिंता होती है मुझे, कर्म के नाम पर अब ग्लानी होती है मुझे, कर्म के नाम पर अब ग्लानी होती है मुझे, फिर सुनहली किरण होगी, फिर छाएगी मेघमाला, रक्त सिंचित है यह धरती, हर दम यही कहता शिवाला। कंकरीले पथ पर चलने का आदि हो चुका हूँ, कंकरीले पथ पर चलने का आदि हो चुका हूँ, बोझ लादे पीठ पर चलने का आदि हो चुका हूँ, कट जाएगा सफर यह भी, कट जाएगा सफर यह भी, छेड़ दो गीत कोई साज वाला, कट जाएगा सफर।

माला रक्त सिंचित है ये धरती हर दम यही कहता शिवाला। दिवस में भी अब तिमिर काया भाष होने लगा है, दिवस में भी अब तिमिर काया भाष होने लगा है, जुगनुओं के देश में फिर रवि निकलने लगा है। मित्र मेरे कुछ कहो ना, मित्र मेरे कुछ कहो ना, क्या फैलेगा फिर उजाला, फिर सुनहली किरण होगी फिर छाएगी मेघमाला। रक्त सिंचित है ये धरती हर दम यही कहता शिवाला, फिर सुनहली किरण होगी फिर छाएगी मेघमाला। रक्त सिंचित है ये धरती हर दम यही कहता शिवाला। अब आपको एक कौमी एकता का गीत दे रहा हूँ जो हमारे वीर जवानों के लिए है। हम जवान

ओ हम जवान हैं एकता की आवाज है, कदम मिला के आओ हम जवान हैं। हाथ में मशाल है, हम जवान हैं कदम मिला के आओ हम जवान हैं कदम मिला के आओ।

हम जवान हैं, कदम मिला के आओ, कदम मिला के आओ। तिरंगा है पास मेरे तो डर है किस बात का, तिरंगा है पास मेरे तो डर है किस बात का, आज की आवाज है कदम मिला के आओ, कदम मिला के आओ। हम जवान हैं, हम जवान हैं,

जागरी दादुर मोर पपिया बोले, दादुर मोर पपिया बोले, बेला चमेली सुगंध है घोले, बेला चमेली सुगंध है घोले, गरज गरज के बदरा बरसे, गरज गरज के बदरा बरसे गोरी।

0: अभी आपको अपनी काव्य रचनाएं सुना रहे थे सत्यनारायण पथिक। अब आज का हिंदी कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, एम्स गोरखपुर के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओबी रिकॉर्डिंग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम, संकलन और वाचन मोहम्मद फारूक जमाल का, प्रस्तुति नूर मोहम्मद।
2: एम्स गोरखपुर के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को एम्स गोरखपुर के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कुमार की अध्यक्षता में तथा एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता की संयुक्त प्रेसवार्ता गोरखपुर एम्स में आयोजित की गई। प्रस्तुत है इस प्रेसवार्ता की ओबी रिकॉर्डिंग पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट। इस संबंध में हमने एम्स गोरखपुर के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया।
3: सर, आज ये 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर आपने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: सबसे पहले आप सबों का स्वागत है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है आज के फाउंडेशन डे मनाने का, वो आपको ये बताना है कि पिछले 7 साल में हम लोगों ने क्या उपलब्धि प्राप्त किया, और ये भी बताना है कि पिछले 1 साल में हम लोगों की उपलब्धि क्या रही और इसकी तुलना करना। हर वर्ष हम एक माइलस्टोन बनाते हैं और पीछे की तरफ ये नहीं मुड़के देखते हैं कि हमने पीछे क्या काम किया। पिछला माइलस्टोन बनाने के बाद हम अगला माइलस्टोन, क्या पत्थर की मील हम बनाएंगे, वो हम तैयार करते हैं और हम आगे की तरफ देखते हैं कि पिछले वर्ष के अनुपात में मैं अगले साल और क्या अपने कार्य में वृद्धि कर सकता हूँ। ये हम लोगों का उद्देश्य एम्स गोरखपुर के कैंपस में हमेशा रहा है।
3: एम्स जो है, चूंकि आपके ये टाउनशिप के अंदर है, शहर के अंदर है, तो इस पर लोड जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो इस लोड को कम करने के लिए आप क्या विस्तार कर रहे हैं?
4: हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा और फैकल्टीज को अपॉइंट करें, उनकी नियुक्ति करें। हम लोग इसमें पूरे प्रयासरत हैं और हम लोग रोलिंग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और रोलिंग एडवर्टीजमेंट से हम लोगों के यहाँ धीरे धीरे फैकल्टी के नंबर बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जितने मरीज यहाँ पे आते हैं हम लोग उनकी अच्छी से अच्छी सेवा कर पाएं और उनकी अच्छी से अच्छी हम लोग इलाज कर पाएं। यही हम लोग का उद्देश्य है और इसमें हम लोग इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफलता पा रहे हैं। हमें एक्सपेंशन के लिए लैंड की आवश्यकता है। इन सारे बातों को हम लोगों ने सरकार के

0: तरफ बढ़ाया है और इस पे बात हुई है, आगे भी बात होगी और देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं।
1: सर, नेफ्रो जैसी व्यवस्था को आपने यहाँ काफी एक्टिव किया, देश में ये शायद अपने स्तर का पहला है।
0: प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी का ये देश का पहला ओपीडी यहाँ खुला है और इसमें इस ओपीडी में लोग आ रहे हैं। और किडनी की बीमारी का रोकथाम कैसे हो, किडनी की बीमारी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस ओपीडी का ये उद्देश्य रहा है और इससे लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को काफी इससे लाभ मिल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ।
2: होगी सर, अगर पेशेंट की बात कही जाए आप तो कितना लोड है
0: ओपीडी में? औसतन प्रतिदिन यहाँ पे लगभग 5,000 लोग आ रहे हैं और हमारी जो सैया है इंडोर है लगभग 85% ऑक्यूपेंसी रेट हमारे यहाँ।
1: 15% को क्यों छोड़ना पड़ता है सर?
0: 15% इसलिए छोड़ना पड़ता है कि मान लीजिए कभी कोई आकस्मिक मरीज हमारे पास आ गए इमरजेंसी सिचुएशन में, तो अगर मैं उनके लिए बेड नहीं रखूंगा तो उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए।
3: सर ये बताइए कि एम्स में अभी आप रोबोटिक्स में क्या नया करने वाले हैं?
0: रोबोटिक के लिए ऑलरेडी प्रोसेस में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल ही हम लोगों का रोबोटिक और कैथ लैब दोनों इंस्टॉल हो जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है।
3: किस प्रोसेस में और कहां तक है ये?
0: जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस में है ऑलरेडी ये और इस साल तक ये कार्यान्वित हो जाएगा।
3: सर ये बताइए कि एम्स में प्राइवेट वार्ड्स भी यहाँ पे हैं और उनमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं?
0: प्राइवेट वार्ड अभी हाल में ही शुरू किया गया है और उसमें मरीज भर्ती होना शुरू हुआ है और हमें लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को बताना है कि इसकी सुविधा यहाँ शुरू हो गई है और लोग इससे काफी लाभ उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
3: मेडिकल टर्म में टीयर सिस्टम क्या होता है सर, इसके बारे में बताएं।
0: टीयर सिस्टम में देखिए, मेडिकल जो है वो सिस्टम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होता है, ठीक है
3: जी।
0: तो हम जो टर्सरी केयर सिस्टम जो है, जो टीयर 3 पे आता है
3: जी,
0: टर्सरी केयर सिस्टम में जितने भी सुपर स्पेशलिटी के जो इलाज होते हैं वो उसकी उपलब्धता होती है, लेकिन हमारा जो अपना मानना है कि टर्सरी केयर सिस्टम में अगर
3: जी
0: प्राइमरी केयर सिस्टम वाले पेशेंट या सेकेंडरी सिस्टम में जो जरूरत पड़ने वाले जो मरीज होते हैं उनके भी इलाज की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे।
3: अच्छा, एम्स के अंदर वैसे तो ये सरकारी तौर पे जो मरीज आते हैं उनका इलाज होता है, लेकिन क्या एनजीओ का भी कोई रोल हो सकता है इसमें और क्या हो सकता है?
0: अगर एनजीओ की मंशा सही हो तो इसका रोल बहुत बड़ा रोल है और हम इसमें वो लोग काफी मददगार हो सकते हैं मरीजों को खास करके सुविधा मुहैया कराने के लिए, आगे बढ़ करके वो लोग यहाँ के एम्प्लॉयज के साथ हाथ में हाथ मिला करके काम कर सकते हैं।
3: एम्स में कुछ नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में कोई अपडेट है?
0: हाँ, कुछ डिपार्टमेंट में डीएम स्टार्ट हुए हैं जैसा कि मैंने बताया आपको
3: जी, जी।
0: और कुछ पीडीसीसी कोर्स भी शुरू हुए हैं, कुछ डीएम कोर्स स्टार्ट हुए हैं और एमसीएच कोर्स भी किसी एक डिपार्टमेंट में स्टार्ट हुआ है।
3: टेस्ला मशीन का क्या अपडेट है सर?
0: टेस्ला में 3 टेस्ला की जो नई मशीन जो है यहाँ पे बहुत जल्दी उपलब्ध होने वाली है, हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त सितंबर तक ये यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, इससे मरीजों को काफी लाभ मिलेगा।
3: अच्छा, गोरखपुर एम्स से इस पूर्वांचल के और आसपास के जो लोग, अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन बनाई गई है?
0: हेल्पलाइन सिस्टम है हमारे यहाँ, हेल्पलाइन सिस्टम भी है।
3: और कैसे हमारे सुनने वालों को बता दें कि अगर आपसे कोई यहाँ पे आना चाहे तो किस सिस्टम के थ्रू कैसे आना चाहे?
0: नहीं, ऑनलाइन सिस्टम भी है, आप साइट पे जाइए, वहाँ से भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: कौन सी साइट है थोड़ा बता दें इसके बारे में?
0: वो जो है गोरखपुर की ही जो डायरेक्ट साइट है, आप गूगल एम्स गोरखपुर आप लिखेंगे सारा डेट सारा साइट दिखाई पड़ेगा आप,
3: और अपना अपॉइंटमेंट वहाँ पर ले सकते हैं मरीज से। हाँ, फिर आपके वहाँ सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मरीज जो यहाँ से दिखा के जाते हैं वो यहाँ की सुविधा क्या मिली है इसके बारे में भी जो समाज में जाके वो बता रहे हैं और इससे लोगों को समाज में फायदा हो रहा है, फिर वो उसके द्वारा भी जो है मरीज यहाँ पे आते हैं।
3: ओपीडी टाइमिंग क्या होती है आपके वहाँ?
0: ओपीडी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 8:30 बजे सुबह में
3: 8:30 बजे
0: शुरू हो जाती है। शाम में जब तक मरीज खत्म नहीं होते हैं तब तक ओपीडी चलता रहता है और उसमें सारे जितने भी हमारे चिकित्सक गण हैं वो मुस्तैदी से मरीजों को देखते हैं और मरीज अंतिम मरीज देखने के बाद ही वो अस्पताल से बाहर जाते हैं।
3: तो पूर्वांचल के जो हमारे मरीज हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं उनको लिए?
0: पूर्वांचल के मरीज को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, आपका स्वागत है एम्स गोरखपुर के कैंपस में। आपको कोई भी कभी दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी अधीक्षक महोदया हैं।

0: उनसे आप डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे हमारे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, इंक्लूडिंग आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट हों, डीडीए डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हों या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हों, सभी लोग मुस्तैदी से मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। और शिकायत किसी भी तरह की हो तो वहाँ आप दर्ज करा सकते हैं, उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा और जो भी उसका निस्तारण हो पाएगा अपने स्तर पर उसको किया जाएगा।
1: एम्स के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में हमने एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता से बातचीत की तो उन्होंने बताया,
2: आपने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे क्या मोटो है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें।
3: आज हमारा 7वां फाउंडेशन डे है एम्स गोरखपुर का और ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है कि हमने 7 साल में काफ़ी यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं। अब हमारे पास लगभग 8-9 सुपर स्पेशलिटीज हो गई हैं और इसके अलावा हम और ऑपरेशंस कर रहे हैं, करीब लगभग 1000 से ऊपर ऑपरेशंस हमारे यहाँ 15 दिन में हो जाते हैं। इसके अलावा ओपीडीज हमारी इतनी बढ़ गई हैं, पहले लगभग 2000 के करीब फुटफॉल था, आज के दिन में 5000 पेशेंट्स एक दिन में आते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और आगे भी हमारी सोच है कि हम और माइलस्टोन्स अपने डेवलप करें। जैसे कि अभी हम साइटोजेनेटिक्स एक डिपार्टमेंट हम डेवलप करने वाले हैं, रोबोटिक सर्जरी है, इसके अलावा एआरटी है और एक बड़ा सा हम ब्लड कलेक्शन सेंटर भी बना रहे हैं और एक और चीज़ जो हम मन में सोच रहे थे कि कुछ एमआरआई की फैसिलिटी और बढ़ाई जाए
2: जी।
3: तो वो भी एक ऐसा है कि जो हमारे अभी बस मतलब लगने वाली है बिल्कुल। तो ये हमारे कुछ माइलस्टोन्स हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में एम्स गोरखपुर एक मेडिकल हब बने, यहाँ से जो मरीज आए उसको बढ़िया से बढ़िया इलाज मिले और उसके लो कॉस्ट मिले। मैं कहना चाहूँगी एम्स जो बना है वो गरीबों के लिए ही बना है और हम पूरे अपनी सहयोग देंगे इसमें और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी मरीज़ यहाँ पर आए तो उसका अच्छा इलाज हो और वो यहाँ से हंसता हुआ जाए, मरीजों को यहाँ से लखनऊ और दिल्ली ना जाना पड़े, ऐसा एम्स गोरखपुर एक मेडिकल हब बने पूर्वांचल।
2: मैम, कीमोथेरेपी में डे केयर सेंटर के बारे में उसका क्या अपडेट है?
3: हमने एक डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर भी डेवलप करा है, उसमें लगभग 16 बेड्स हैं। उसमें फ़ायदा ये है कि हमारे जो वार्ड्स के जो बेड्स हैं वो पेशेंट्स नहीं ऑक्यूपाई करते हैं, ये अलग से एक वार्ड बनाया है जिसमें मरीज आते हैं
2: जी।
3: और अपनी कीमोथेरेपी लेके घर चले जाते हैं।
2: बैरे की कीमोथेरेपी इसमें क्या है?
3: की थेरेपी कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है और ब्रैकी थेरेपी भी एम्स गोरखपुर में फिलहाल ही अभी पिछले साल ही हमने शुरू करी है, ये भी हमारा एक माइलस्टोन है। इससे कैंसर के मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा और हम बहुत ही लो कॉस्ट में देते हैं कंपेयर टू अगर आप बाहर की उसका इलाज का कॉस्ट देखें।
2: अच्छा, खून की जांच भी जो आपके वहाँ बहुत कम पैसे में हो रही है और अच्छी जांच हो रही है
3: जी।
2: और एक्सरे में भी क्या पोजीशन रही आपकी?
3: हमने एक्सरे जो है उसके एक्सरे जो रूम्स है वो हमने दो और एक और बढ़ा दिया है
2: जी।
3: और हमारे यहाँ 24 आवर्स एक्सरे चलता है तो लगभग 400 एक्सरे अप्रोक्सीमेटली 400 से 450 भी हो सकता है पर डे 24 आवर्स में इतने एक्सरेज हमारे यहाँ होते हैं।
2: मैम, जैसा अभी आपने कहा कि एम्स गोरखपुर गरीबों के लिए बनाया गया है और आपकी ये कोशिश होती है कि अधिक से अधिक जो है जो कम पैसे वाले हैं जिनके इलाज का ही नहीं हो सकता एम्स गोरखपुर करे, तो पूर्वांचल के लोगों के लिए आकाशवाणी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
3: आप हमारे पास आइए, जब भी आपको कोई तकलीफ हो, भगवान ना करे कोई तकलीफ हो, लेकिन जब भी कोई

0: परेशानी हो रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज, एम्स आपके लिए खड़ा है, बिल्कुल आपके मजबूती के साथ आपको सपोर्ट करेगा।
1: अभी आप एम्स गोरखपुर के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली प्रेस वार्ता की ओबी रिकॉर्डिंग पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। संकलन एवं वाचन था मोहम्मद फर्रुख जमाल का।
2: यह कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित किया गया।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा, गोरखपुर।
7: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में अच्छी फनकार गुलाम अली।

मैं चला जाऊंगा इसके साथ साथ, क्या बात है। अगर ये मूव कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। आखिरी शेर

0: अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली को। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी गोरखपुर है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन

0: यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8-4-3-6-2-8-1-7-9-3-0-8-4-9-1-5-5-2-3-7-1-4 और 8-4-3-3-4-5-2-0-4-1-4 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है।

0: योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुआई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुआई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवाः, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से

0: जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें, उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो जगन्नाथो चढ़ी नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भौंर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है। प्रभु के आज्ञामाल आने से बाद हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है।

0: पूरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक हक संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई के रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जो की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पथी पांचन होता है, आम, केला, कनस, सपुरी, सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का कोरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्थ होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीय तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देवदलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निष्ठानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है, वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सकें। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियाँ उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संचेशन के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियावाड़ा से आया हूँ। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कठियावाड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
5: मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं, और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
6: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है,

परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी ये थे हमारा ध्रुव वही के जन्म में मोर कुछ दिन हमन अटारी में रहें फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी मिले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुकलाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लेके ला छोड़ के चल देवे भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं हैं हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ माँ गावे आरू

0: या जनकारी राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के गनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। और ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगाव है। तो सुने पर आते कि वो छोटे से चटाई निकाली से कथे में बैठ बेटा में बैठ। कतका कन सुने ऐसे कि कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोलीस कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की इस। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

हरकत कर देते, ऐसे लगते थे कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका, ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ल सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है, उमन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते, हम लग कई कौन सी मिट्टी में बना के हम ला भेजे।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हैं तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला एती तेती बहका सकत रहे हूँ, ओ में अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खाती हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मल्ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाथे आ तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत है अच्छा लागते, हाँ लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा।

0: स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Suryaprasad on the ghatam.
0: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapatim, a composition of Muthaiah Bhagavatar in Natharagam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जीआर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in

0: का तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार